印度这里广播电台，听众朋友，我们现在播送瓦盖里民间歌曲，请收听。

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका

0: अब उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
2: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार

0: बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के

0: COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो, ध्रुव कपिला और रोहन कपूर, रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग

0: मारगांव में ख्वातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के उजराए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी ओंग, जापान के वजीर खारजा तोशीमित्सु मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। ये उजरा मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे ले जाने पर तबादला ख्याल करेंगे, मौजूदा क्वाड इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुलकाहिल खित्ते के हालात व वाकयात नीज बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैनुल-अक़वामी उमूर पर गौर व फिक्र करेंगे। आज़ाद और खुले भारत बहरुलकाहिल खित्ते के क्वाड के नज़रिए के ऐन मुताबिक ये उजराए खारजा पिछले साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में मुनक़िदा बातचीत पर आगे कदम बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के उजराए खारजा कल नई दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर इस महीने की 23 तारीख को यहां आ गए थे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: क्वाड के वज़राए खारजा की ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है कि जब आलमी सतह पर गैर यकीनी के हालात हैं और मगरबी एशिया का बहरान भी जारी है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड ग्रुप भारत बहरुलकाहिल खित्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत क्वाड के मौजूदा सदरनशीं होने के नाते इसकी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। क्वाड के मुल्क आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए एक ताकत के तौर पर काम करने और खुले, आजाद और जामे भारत बहरुलकाहिल खित्ते की हिमायत के तई अहद के साथ यकजा हो रहे हैं। क्वाड ने एक मुसबत और अमली एजेंडा इख्तियार किया है, जिसमें सेहत की यकीनी फराहमी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों, नीज बहरी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने जैसे मौजूदा मामलात और चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी और कई मुकामात का दौरा करेंगी। सिक्किम सरकार ने उनका इस्तकबाल करने के लिए वसी इंतजामात किए हैं। सदर जमहूरिया शाम को गंगटोक में तिब्बती उलूम के नामग्याल इदारे में जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कल नाथुला पास का दौरा करेंगी, जहां वो तैनात सिपाहियों के साथ गुफ्तगू करेंगी। कल ही वो गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगी। इस मौके पर तकरीबन 14,000 डिग्रियां पेश की जाएंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में एक तकरीब में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुल्क के सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी से मुतालिक मीटिंगें करेंगे। जनाब अमित शाह कल राजस्थान में बीकानेर पहुंचे। वजीर दाखिला आज सुबह BSF की सांचू सरहदी चौकी पर जाएंगे, जहां वो तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों से गुफ्तगू करेंगे और उनके लिए बहबूद की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। दोपहर को जनाब अमित शाह बीकानेर में सरहदी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से गोंडोला रोपवे के रुक जाने के बाद से केबिन में फंसे हुए सभी सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। हुकाम ने बताया है कि केबल कार के 65 केबिन्स के अंदर 300 से ज़्यादा सयाह फंसकर रह गए थे, जिनमें कुछ ज़मीन से तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर केबिन में मौजूद थे, जिससे ख्वातीन और बच्चों समेत सयाहों में बेचैनी फैल गई। फौरन ही इमरजेंसी इकदामात किए गए। SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की चनार कोर और मुकामी इंतजामिया की टीमों ने मिलकर बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी, जो 7 घंटे तक चली। सभी मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई। جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تکنیکی خرابی کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی طرح کی کوتاہی پائے جانے پر کارروائی کی جائے گی۔

0: जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में डोरीमल इलाके के घने जंगलात में छुपे हुए मुश्तबा इंतहा पसंदों का पता लगाने के लिए तलाश की कार्रवाई आज चौथे दिन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तसर फायरिंग के बाद दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है। हफ्ते के रोज वहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम शुरू हुआ था। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने कांगो और युगेंडा में इबोला बीमारी फैलने को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से बैनुल अक्वामी तशवीश की सेहत आम्मा से मुतालिक इमरजेंसी करार दिए जाने के तनाजुर में एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। DGCA ने कहा है कि युगेंडा और कांगो के लिए परवाजें चलाने वाली फिजाई कंपनियों को मुसाफिरों के उतरने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर दाखिल करने और उन्हें वसूल करने को यकीनी बनाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: DGCA ने फजाई कंपनियों के लिए ये लाजमी बना दिया है कि वो परवाजों के दौरान सेहत से मुतालिक मखसूस ऐलान नशर करें ताकि मुमकिन एबोला केसों की जल्द निशानदेही हो सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो बुखार, कमजोरी, दर्द होने, सर में दर्द, गले में खराश और कह होने या खून बहने जैसी अलामतों के बारे में हवाई जहाज के अमले के अहलकारों के साथ साथ इमिग्रेशन या तिब्बी हुक्काम को पहुंचने पर इसकी इत्तला बिला ताखीर दें। DGCA ने कहा है कि अगर भारत पहुंचने के 21 दिन के अंदर इस तरह की अलामतें जाहिर होती हैं तो मुसाफिरों को मखसूस अस्पतालों से तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए और हवाई अड्डे के सेहत हुक्काम को मुत्तला करना चाहिए। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। दिल्ली में CNG की कीमत 83 रुपये 9 पैसे फी किलोग्राम हो गई है, जिसका इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। पंजाब में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। रियासत में 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल कौंसिलों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पंजाब के साल 2027 के असेंबली इंतखाबात से पहले इन म्यूनिसिपल इंतखाबात को एक अहम सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। रियासत में हुक्मरां आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। रियासती इंतखाबी कमीशन के मुताबिक रियासत भर के कुल 1896 वार्ड से 7555 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सख्त पुलिस इंतजाम के तहत वोट डाले जा रहे हैं। यहां 32,000 पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। वोटरों की शिरकत बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वोटों की गिनती 29 मई बरोज जुमा की जाएगी। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। बुंदेलखंड खित्ता सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। वहां करीब करीब हर ज़िले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया है। जुनूब मगरबी मानसून के आज केरलम पहुंचने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरलम पहुंचता है। मौसमियात महकमे ने केरलम के 14 में से 4 ज़िलों में कहीं कहीं शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र येलो अलर्ट जारी किया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आज़मीन आज सऊदी अरब में फरीज़ हज अदा कर रहे हैं। कल मनासिक हज के आगाज़ के मौके पर आज़मीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अराफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकन आज़म अदा किया जाएगा। ये आज़मीन वहां तौबा इस्तग़फ़ार में दिन गुजारेंगे। आज़मीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुज़दलिफ़ा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के मिज़ाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीकी

0: अमेरिका की सेंट्रल कमान के तर्जुमान तिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके जरिए वहां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें की जा रही थीं। उसने ये भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज जंगबंदी के दौरान अपने फौजियों का दिफा करते हुए जब्तो तहमुल से काम लेती रही हैं। इस हमले के चंद घंटे कबल अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी मुजाकरात में पेशरफ्त होने की बात कही थी। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमात बहाल करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुक्काम ने 87 से ज़्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीप को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीप की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में इलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की क्यादत करेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और HS प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। अदाकार धर्मेंद्र को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस खबर को कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोज़नामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मनासी के हज का बाकायदा आगाज, रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आगरा पहुँचे और अपनी अहलिया के साथ ताजमहल का दीदार किया। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अफ्रीका डे पर मुबारकबाद पेश की, शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, ईरान से मुआहदा न हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस का कीव पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 8:45 और 15 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे अब्दुल सामी खान द्वारा राग नट भैरव में गायन। इनके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर अकबर लतीफ खान।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे अब्दुल सामी खान द्वारा सरोद पर बजाया राग राग नट भैरव। इनके साथ संगत कर रहे थे तबले पर अकबर लतीफ खान। 9:15 होने को है, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय गौरव की भावना को जन्म देती है और एक अग्रणी लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में किसी भी देश की स्थिति को मजबूत करती है। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब उसकी शिक्षा प्रणाली की स्थिति उसकी प्रगति का प्रतिबिंब बनेगी। इसलिए भारतीय विश्वविद्यालय में नवाचार पर जोर दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। डिग्री बनाम दक्षता, स्टार्टअप संस्कृति में विश्वविद्यालयों की भूमिका। पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह, उपाध्यक्ष, जम्मू एवं

0: कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: प्रोफेसर दिनेश सिंह, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले आपके अनुभव से जानना चाहेंगे कि आप गणित के विशेषज्ञ रहे हैं, गणित पढ़ना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण रहा है, खास करके स्कूली शिक्षा के दौरान, और बहुत बच्चे इसीलिए आर्ट्स ले लेते हैं कि आगे जाके उनको मैथमेटिकल अप्रोच और रीजनिंग उनको लगता है।

0: कारण विज्ञान विषय कठिन हो जाते हैं। तो आपने जो एक लचीली और बहुविषय शिक्षा पद्धति बनाई थी, एक अवधारणा को बल दिया था दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो गणित की शिक्षा है उसको लेकर के आपके अनुभव क्या है और किस तरह लोगों को उसका फायदा अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को मिल सकता है?
1: देखिए, शिक्षा अंतरात्मा की खोज है। ये हर व्यक्ति विशेष के अंतरात्मा की खोज को ही उसकी शिक्षा कहा जाता है। हर व्यक्ति विशेष के अंदर एक ध्वनि है, उसके अंतःकरण की ध्वनि, उसके जो है आत्मा की ध्वनि, मैं उसको अंतर्ध्वनि कहता हूँ। और गणित में जब आप किसी चीज की परिभाषा देते हैं तो उसके साथ उदाहरण भी देना पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। तो पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जीवन पर्यंत की यात्रा है अपने आप की खोज। लेकिन जब आपको ध्वनि मिल जाती है तो आप प्रशिक्षित तब होने लगेंगे जब उस ध्वनि के अनुकूल संसार में कदम रखेंगे। आप उसके अनुकूल कदम रखिए, आप प्रशिक्षित होने लगेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने इसमें कहीं किसी औपचारिक डिग्री की चर्चा नहीं की, मतलब ही नहीं है। जिन लोगों को मैंने अपने जीवन में आदर्श माना उनमें से शायद ही किसी के पास कोई डिग्री रही। मैं कबीर को मानता हूँ, मैं तुलसीदास को मानता हूँ, मैं सूरदास को मानता हूँ, मैं महात्मा गांधी को मानता हूँ, गुरु नानक को मानता हूँ, किसी के पास डिग्री नहीं थी। मैं माइकल फैराडे को मानता हूँ, विज्ञान के इतने बड़े वैज्ञानिक रहे, उनके पास कोई डिग्री नहीं, तो स्कूल भी नहीं पास थे। तो आप समझ रहे हैं, लेकिन ये क्यों प्रशिक्षित थे, क्यों विद्वान थे? इन सब ने अपने अंतरात्मा की खोज को, ध्वनि को पकड़ लिया था। देखिए, गांधी जी ने बड़े कम आयु में अपने आत्मा की ध्वनि पकड़ ली थी, वो थी सत्य से जुड़ जाओ। वो बार बार ध्वनि पुकार रही थी, सत्य सत्य सत्य। कैसे हुआ? एक बार वो 8-9 साल के थे, एक नाटक देखने गए थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वो नाटक जब उन्होंने देख लिया तो उसका ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि घर आते ही वो आईने के सामने खड़े हुए और प्रण लिया उन्होंने कि जीवन पर्यंत मैं सत्य से जुड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो ये उनकी ध्वनि थी, उसी के अनुकूल वो कदम रख रहे थे। ये तो नहीं रखा उन्होंने कि मुझे इससे नौकरी मिलेगी, इससे नहीं रखा कि मैं महात्मा बन जाऊंगा या अंग्रेजों को भगा दूंगा। वो तो सत्य से जुड़ रहे थे, ध्वनि से जुड़ रहे थे, उसके अनुकूल कदम रख रहे थे। यह आप करने लगे भला होगा। उसी तरह आप रामानुजन को ले लीजिए, रामानुजन के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, पता नहीं लोग जानते हैं कि नहीं, उनको तो 12वीं भी नहीं पास करने दिया, निकाल दिया मद्रास यूनिवर्सिटी ने उनको, ये सब हुआ। लेकिन इतने बड़े गणित, मैं तो उनको देवता मानता हूँ, हमारे लिए गणित के वो ईश्वर हैं। तो क्या बात थी, उनके हाथ एक पुस्तक स्कूल में लग गई गणित की, और कोई ऐसी चमत्कारी पुस्तक भी नहीं थी, लेकिन वो पुस्तक से उनके अंदर की ध्वनि जग गई कि यही मुझे करना है, मैं गणित से जुड़ूंगा। फिर वही बात जो गांधी के साथ थी कि चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, रामानुजन निष्ठा से जुड़ गए, चाहे कोई कीमत मुझे चुकानी हो मैं गणित नहीं त्यागूंगा। गरीबी में थे, खाने को नहीं मिलता था, पिताजी नाराज हो जाते थे, लेकिन उन्होंने गणित को नहीं छोड़ा, तो फिर पार हो गए, रामानुजन बन गए, ईश्वर बन गए। तो संसार में ये सारी ध्वनियां हैं, शिक्षा की संस्थाओं को ये करना होगा कि बच्चों को इन ध्वनियों से धीरे धीरे परिचित कराएं, तो कोई न कोई एक ध्वनि यहाँ जगा देगी। जैसे नाटक ने गांधी जी को जगाया, गणित ने रामानुजन को जगाया, ऐसे ही होता है। जब मैं वाइस चांसलर था, यही प्रयास किया कि मैंने हमारी शिक्षा की जो पद्धति थी पूरी बदल दी। हमने कहा कि आप डेटा से जुड़िए, हमने कहा आप आईटी से जुड़िए, हमने कहा आप कम्युनिकेशन से जुड़िए, ये सारी चीजें पहले वर्ष में हमने उस बच्चे को उपलब्ध कराया। पद्धति बदली, पेडागोजी एकदम बदल दिया कि बच्चा जो है इसको लेकर ब्लैक बोर्ड से नहीं सीखेगा, वो व्यवहारिकता से सीखेगा, प्रोजेक्ट्स करेगा ग्रुप्स में, तो उससे उसको बहुत फायदा मिला। और कई ध्वनियों को हमने चखाया बच्चे को पहले वर्ष में, तो उसका रुझान कहीं ना कहीं बनने लगा। तो दूसरे वर्ष में यही पेडागोजी एक्शन के साथ जुड़ी, प्रोजेक्ट में काम करो, ब्लैक बोर्ड पे कम और रटना कम, वो करते करते वो दिशा में स्पेशलाइज करता गया। लेकिन साथ में संस्कृत पढ़ रहा है बच्चा, पहले संस्कृत पढ़ते थे बच्चे तो सिर्फ संस्कृत पढ़ते थे, हमने कहा इसके साथ तुम कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सीखो अगर तुम्हें रुचि है। तो आप यकीन कीजिए, मैं हजारों बच्चों से मिला, संस्कृत के करीब एक तिहाई ने हमसे बोला हमें कोडिंग से जुड़ना है, कभी मौका ही नहीं मिलता था, अब हमने जोड़ दिया। तो अब वो संस्कृत को लेकर कोडिंग में निपुण हो गए, अब उनको नौकरियां भी अच्छी मिल जाएंगी या अपना कुछ स्टार्टअप बना सकते हैं। ये हमने शुरू किया था, नॉलेज को एक्शन से जोड़ा, व्यवहारिकता लाए हमारे पेडागोजी में, ये हमारी परियोजना थी। नई शिक्षा नीति यही कहती है।
0: और वही शायद क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की जो स्थापना की गई थी,
1: पहला प्रयोग मेरा वही था, 2012 में मैंने उसकी स्थापना की। वहाँ पर ट्रांस डिसिप्लिनरी लर्निंग होती थी और व्यवहारिकता से, और वहाँ के बच्चों को हमें गूगल ने कहा कि साहब आपके जो ये बच्चे हैं अभी वो पास भी नहीं हुए थे लेकिन वो कोई इंटर्नशिप नहीं करते थे गूगल के साथ, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे गूगल के साथ, जो प्रॉब्लम्स होते थे गूगल ने हमको कहा कि साहब ये किसी भी आईआईटी के बच्चे से ज्यादा मजबूत।

0: बूत हैं, सक्षम हैं, हम इनको प्रिफर करते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल था वो।
1: निश्चित रूप से डिग्री बनाम दक्षता की जो बात की जाती है, कौशल की जो बात की जाती है, उसका प्रयोग आपने बहुत पहले ही अपने कार्यकाल के दौरान अपने ही विश्वविद्यालय में किया था। आपने जैसे डाटा की बात की थी, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, डाटा साइंस का युग है, इसके साथ ही गणित की भूमिका भी बढ़ जाती है, साथ ही होता है इस सबके उपयोग के लिए एक वैज्ञानिक सोच, तार्किक दृष्टिकोण की। तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालय हैं उनके जो शैक्षणिक पद्धति है वो किस तरह की है, किस तरह के सुधार होने चाहिए, और हम अगर एक अपनी शिक्षा पद्धति को लेके एक वैश्विक स्तर पर आना चाहते हैं, एक पहचान के रूप में, जो ग्लोबल हब के रूप में आना चाहते हैं, तो किस तरह के हमारे लक्ष्य होने चाहिए?
0: देखिए, उसके सारे नुस्खे नई शिक्षा नीति जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जड़े हुए हैं, वो तो भारत के पूरे परंपरा में जुड़े हुए रहे हमेशा से, तो उसको अपना लें सही माने में। हम भूल क्या कर रहे हैं कि हम उसको एक औपचारिकता में अपना लेते हैं। लोग कहते हैं अच्छा इसको आप और विषय से जोड़िए, तो मान लीजिए आप गणित पढ़ रहे हैं, अच्छा इसको एक हिस्ट्री का कोर्स दे दो, एक संस्कृत का कोर्स दे दो। वो नहीं कह रही है शिक्षा नीति, उसका कहना है कि गणित इतिहास के माध्यम से भी सीखो और इतिहास को गणित के माध्यम से सीखो, तो इतिहास में गणित और गणित में इतिहास, वो हम नहीं कर पा रहे, उसको ट्रांसडिसिप्लिनरिटी कहते हैं। देखिए मैं उदाहरण देता हूं आपको, नोम चॉम्स्की बड़े जाने माने विद्वान है, MIT के प्रोफेसर, अब तो बड़ी उम्र हो गई, उनकी आयु बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको 70 के दशक में ह्यूमैनिटीज का आइंस्टाइन कहा जाता था। उन्होंने बड़ा भारी रेवोल्यूशन, क्रांति ला दी थी लिंग्विस्टिक्स में। वो जो क्रांति ले आए थे, उन्होंने क्या किया था, उनको गणित आती थी, थे लिंग्विस्टिक्स के आदमी, वो गणित जानते थे, संस्कृत जानते थे, संस्कृत में जो पाणिनि के वैशेषिक तत्व थे वगैरह थे, उसका उन्होंने गहरा अध्ययन किया था और उसको गणित के ढांचे में डालकर लिंग्विस्टिक्स में लगाया और उसी से क्रांति आई। अब हमारे यहाँ देखिए इतने छात्र गणित भी पढ़ते हैं, कितने सारे छात्र संस्कृत पढ़ते हैं, कितने सारे छात्र लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी छात्र ये काम नहीं कर सका जो उन्होंने करके दिखाया, जबकि तीनों चीज में भारत निपुण रहा है। अब आप समझ रहे हैं, वो इसलिए कि हमने हर विषय को एक कुएं के अंदर डाल के रखा और विषय की तरफ उसको जाने नहीं दे, उससे नई शिक्षा नीति कह रही कि बाहर आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति चिल्ला चिल्ला के कह रही इससे बाहर आइए, विषय को विषय से जुड़ने दीजिए नैसर्गिक रूप से, तब नए आविष्कार होंगे, नई सोच निकलेगी, आर्थिक रूप से लाभ होगा।
1: और शायद इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो नई शिक्षा नीति है वो अधिक वैज्ञानिक होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति भी आई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जय विज्ञान में जय अनुसंधान जोड़ा, तो तब से लेके बहुत सारी नए नए जो कार्य हो रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनोवेटिव वे में, और आज वर्तमान में अगर देखें तो एक स्टार्टअप की संस्कृति का विकास हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये, इसमें विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खास करके नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में। तो आपके अनुभव से आपको क्या लगता है कि जो इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड में एक बड़ा बजट रखा है, उसका उपयोग विश्वविद्यालयों को किस तरह से करना चाहिए?
0: देखिए मैं फिर उदाहरण से समझा, जब मैंने इनोवेशन सेंटर बनाया 2012 में, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, और वहां जो प्रयोग आरंभ किए, तो वो यही थी कि आपको नॉलेज को, विज्ञान को समाज के चुनौतियों और आवश्यकताओं से जोड़िए प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो पहले ही वर्ष में 3 छात्र थे, एक छात्रा और 2 छात्र, उन्होंने मिलके डेटा, IT और फाइनेंस को जोड़ा, ये 3 अलग विषय हैं, और उन्होंने स्टार्टअप बनाया। तो हमारे यहाँ हमने छूट डाली थी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर कोई स्टार्टअप की आइडिया लाते हैं, मान लीजिए आप गणित पढ़ रहे हो, आपके पास स्टार्टअप की आइडिया है, वो फेल हो कि ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, आइडिया सही तरह से मनाया है सिंसियरली, तो आपको कई अंक हम प्रदान कर देंगे और उस स्टार्टअप के लिए हम सहायता भी देंगे आर्थिक। हमारे पास तो विश्वविद्यालय बहुत कम, सहायता के माध्यम बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा। एक साल के बाद जब वो दूसरे वर्ष में आए, तो नारायण मूर्ति साहब ने कहा कि मैं ये स्टार्टअप 30 करोड़ में खरीद लेता हूँ। उन बच्चों ने नहीं बेचा, वो आगे बढ़ते गए, यहाँ से पास भी हो गए, अब वो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में है और सब अरबपति बने बैठे हैं। लेकिन ये अलग एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, हमारे यहाँ उसके बाद जब हमने 4 वर्षीय परियोजना पूरे विश्वविद्यालय में लागू की, तो स्टार्टअप्स को हमने एक केंद्रीय रूप से रखा था, सेंट्रल था वो, और बच्चों ने स्टार्टअप बनाया। तो मेरा जब कार्यकाल समाप्त हुआ, तो कई करोड़ के स्टार्टअप दिल्ली विश्वविद्यालय में चल पड़े थे अंडर ग्रेजुएट से।
1: आप पद्मश्री से सम्मानित हैं, आप उपाध्यक्ष हैं जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद के, तो वहाँ उच्च शिक्षा के अवसर के लिए और खास करके दूर दराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने के लिए आप क्या चुनौतियाँ देखते हैं और आप किस तरह चाहते हैं कि वहाँ प्रयास किए जाने की जरूरत है?
0: देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, कि इस वजह से नहीं।

0: कि मैं जुड़ा हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में मैंने काफी सहयोग पाया है। वहाँ अच्छा काम करने के लिए बहुत लोग आगे बढ़े हैं और जो हमारे वहाँ गवर्नर साहब हैं उनका पूरा सहयोग रहता है और उन्होंने जो है हर तरह से सहायता दी है। और मैं कोई चापलूसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। वहाँ पर हमने शिक्षा की संस्थाओं को एक नया स्वरूप दिया है। इन सबको कहा है कि देखिए, सबसे पहले तो आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जो स्कूल के बाद पहली डिग्री, उस पे ज्यादा जोर दीजिए। नींव वहीं पड़ती है। आपकी नींव कमजोर होगी तो इमारत तो ढीली रह जाएगी। तो नींव कैसे मजबूत करना है, उसके लिए हमने एक नई डिग्री कायम की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल है। उस डिग्री का नाम ही है डिजाइन योर डिग्री। उसका नाम ही है डिजाइन योर डिग्री। तो बच्चे को छूट है कि वो अपनी डिग्री अपने अनुकूल इच्छाओं के, हम लोग उसको सलाह देंगे, लेकिन तुम अपनी डिग्री 4 वर्ष में बना के निकल जाओ। लेकिन उसको छूट है, 2 वर्ष में भी जा सकता है, 3 वर्ष में भी निकल सकता है, 4वें वर्ष जाएगा तो सक्षम रूप से, एकदम पूर्ण रूप से निकल के बाहर आएगा। अब उसमें क्या है, वही है नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसी के सारे सिद्धांत है। हमने ये कहा है कि व्यवहारिकता लाओ, हमने कहा है कि तुम जो अपने डेटा स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, IT स्किल्स, इनको आप जोड़ो, इनसे जुड़ो। उसके साथ साथ हमने उसको कहा है कि तुम प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखो विषय को, तो कई विषय चखो, फिर जो भाएगा उसको दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष में और गहराई से पढ़ना। और हर विषय का हर विषय से लेन देन रहता है, तो उसको हमेशा हम जोड़ के प्रोजेक्ट में ले आते हैं, ट्रांसडिसिप्लिनरी। तो बच्चा सक्षम होता जा रहा है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, जो पहला बैच है अब 4वें वर्ष पहुंचा है, पहला बैच हमारा, जो पहला प्रयोग जम्मू यूनिवर्सिटी में हुआ, उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ने किया, फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया, फिर और विश्वविद्यालय कर रहे हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज कर रही है, सब कर रही है। तो जो पहला बैच था उसमें जो पहली बार हमने किया, तो ये तो नया था, 4 वर्ष पहले की बात है। वहां के बच्चे अभिभावक समझ नहीं रहे थे कि क्या, फिर भी कुछ लोग आए, करीब 40 बच्चे आए, और उनमें से कई ऐसे थे जो निराश थे, जो कहीं मिल नहीं रहा था दाखिला, मनोबल टूट चुका था। जब वो आए तो मेरे जैसा अनुभवी व्यक्ति भी थोड़ा हिल गया था कि भाई इन बच्चों को मैं कैसे इससे जोड़ूंगा। लेकिन हमें अच्छे अध्यापक मिल गए और 1 वर्ष तक हमने बहुत परिश्रम किया। 1 वर्ष बाद उन बच्चों को आप देखते तो कभी मानेंगे नहीं। यहाँ से अच्छे अच्छे जो है पूंजीपति थे, उनको मैंने भेजा कि आप जाके देखिए, तो आके कहे के साहब ये तो हर एक बच्चा वहां का जीनियस है। ये उन्होंने कहा, उसका इतना परिवर्तन हो चुका था मस्तिष्क का, ये हो रहा था उस डिजाइन योर डिग्री में। लेकिन वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही लागू किया और कुछ नया नहीं किया मैंने, वही किया।
1: बहुत अच्छा, और निश्चित रूप से इसका फायदा वहाँ के लोगों को मिलेगा और वहाँ की जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं वो राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर अपना स्थान पाएंगी और उन्हें वो एक राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बाद निश्चित रूप से उस राज्य के लोगों को भी फायदा होगा। प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, इन सब बातों के लिए आकाशवाणी आने के इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा।
2: डिग्री बनाम दक्षता, स्टार्टअप संस्कृति में विश्वविद्यालयों की भूमिका। अभी आप पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे दिलीप झा। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प

0: में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Quad Foreign Ministers meeting concluded in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the meeting, which was attended by U.S. Secretary of State Marco Rubio, Foreign Minister of Australia Penny Wong, and Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He underlined that as democratic nations, they also devoted their attention to countering the common threat of terrorism.
2: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
1: Dr. Jaishankar said bilateral exchanges were devoted to the current state of the world and these four nations focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. He said the maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, and disaster relief activities, among others. U.S. Secretary of State Marco Rubio said Quad countries made further progress on operationalizing their relationship on the areas that they can cooperate.
3: On the areas of cooperation. And it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today, I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also, and it's not only is it increasingly becoming a forum by which we begin

வாங்கள். नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। जिंदगी में असली सुकून और आनंद बड़ी बड़ी सफलताओं से ज्यादा रोजाना मिलने वाले छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। जी हाँ, बड़ी बड़ी बातों में क्या रखा है, चलो आज छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं। भाग दौड़ भरी इस मसरूफ जिंदगी में सुकून के कुछ हसीन लम्हे बुनते हैं। सुबह की वो चाय और चाय की वो पहली चुस्की और खिड़की से आती धूप की वो मुस्कान, पौधों पर महकती हुई नई नई कलियां जैसे कह रही हूँ

थम जा ए इंसान। माँ के हाथों के खाने का वो अनोखा स्वाद और बरसों पुराने किसी मित्र की याद, रास्ते में चलते हुए गीत सुनना या कहिए सुरीला गीत सुनना और अकेले बैठकर नए नए सपने बुनना, बड़ी खुशियों के इंतजार में हर पल को यूं न गंवाना। ये छोटी छोटी राहें ही मंजिल तक ले जाएंगी, बस हर एक छोटे पल को दिल से मुस्कुरा कर जीना। जी हाँ, यही तो जिंदगी है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिमान फिल्म का ये गीत सुना। जी हाँ, आप तो है तुमसे हर खुशी अपनी। अगर हम यही सोच लें कि हर पल में खुशियाँ ढूंढें तो क्या नहीं मिल सकता। और हमारे घर की जो महिलाएं हैं, देखिए

महिलाओं का ये खास कार्यक्रम है घर आंगन, तो हम महिलाओं से तो बात जरूर करेंगे, महिलाओं के लिए ही है और महिलाएं तो ढूंढती भी हैं। सबसे ये अनुरोध है कि हर पल में खुशियां ढूंढिए। अगर आप खुशियां ढूंढेंगे तो खुशियां ही मिलेंगी, और अगर तनाव का माहौल में भी खुशियां अगर आपने ढूंढ ली तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, आकाशवाणी मना रहा है अपने 90 वर्षों का सफर, ध्वनि तरंगों के

मिले, इतिहास को एक माइक मिला। इन शांत दीवारों से ऐसी गूंज निकली जिसने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से लेकर आज तक कालातीत, भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। आकाशवाणी का बाह्य सेवा विभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज पहुंचाता है और प्रवासी भारतीयों को जोड़ता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए AIR का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस विशाल देश के प्रत्येक निवासी को विभिन्न भूभागों में 2400 घंटे सातों दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार और विचार उपलब्ध करवाता है। जी हाँ, ये है आकाशवाणी। अब आकाशवाणी पे रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग ऐतिहासिक रूप से हुई। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। 1980 में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र ने रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग आरंभ की। ये परियोजना भोपाल केंद्र के तत्कालीन स्टेशन डायरेक्टर समर बहादुर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में शुरू की गई। गोस्वामी तुलसीदास के इस महान महाकाव्य के सातों कांडों को रिकॉर्ड करने के लिए 14 लोक कलाकारों की एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें ब्रजभूषण बसु, सुरेखा केलकर, जयश्री थत्ते और रामकिशन चंदेसरी जैसे नाम शामिल थे। रिकॉर्डिंग की यह लंबी प्रक्रिया 1980 से 1992 तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 62 घंटे से अधिक समय का एक विशाल और सुरीला संकलन तैयार हुआ। जी हाँ, रामचरितमानस। अपनी प्रामाणिकता और मधुर प्रस्तुति के कारण ये संस्करण हिंदी भाषी क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय हुआ और इसे आकाशवाणी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे डिजिटल सीडी के रूप में भी जारी किया गया।

90. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और आज के इस कार्यक्म में मैं आपकी रेडियो दोस्त राधा पाठक। अब हम अपनी महिलाओं से इतनी सारी बातें हर बार करते हैं, रोज करते हैं, आके बताते हैं उनको। अब देखिए, मिशन लाइफ के 7 प्रमुख विषय हैं, कुछ दैनिक आते हैं, और हमारी महिलाएं इन बातों को समझ भी रही हैं, और बहुत सारी महिलाओं ने तो हमारी जो बातों को है वो सीरियसली भी लिया है। अब आज जो मैं बताने वाली हूँ ना, उसे बिल्कुल सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर इस पे अमल करते हैं तो। अब मिशन लाइफ के ना 7 थीम्स होते हैं जो दैनिक आदतों में हमें शामिल करने चाहिए। अब विश्व पर्यावरण दिवस 2026 में ठोस कचरा प्रबंधन नियम है, मतलब जो 7 आदतें हैं उसमें से एक आदत है कि जो कचरा आपके घर से निकलता है वो रिसाइकिल होना चाहिए, और जो ई वेस्ट कचरा है वो आप घटाएं अपना। तो इसके लिए है कि भोजन को बर्बाद होने से बचाएं, शादी विवाह समारोह में जो आप जाते हैं बर्तनों

डिस्पोजेबल बर्तन जो होते हैं उसकी जगह पारंपरिक और दोबारा इस्तेमाल वाले बर्तनों का उपयोग करें। घर में भी ऐसा ही करें, ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो ज़्यादा प्लेट्स हो जाए मांझनी पड़ेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप डिस्पोजेबल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे कचरा बहुत ज़्यादा होता है। अपने मोबाइल और लैपटॉप को बार बार बदलने की बजाय रिपेयर कराकर उसका जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। इसे ई जो वेस्ट है, ई कचरा है, वो घटाया जा सकता है। अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स को केवल अधिकृत ई कचरा रिसाइकल्स को ही सौंपना चाहिए, यानी कि आपका लैपटॉप खराब हो गया तो आप ऐसे ही जाने दें उसे, या कोई मोबाइल है पुराना तो वो आपको एक अधिकृत ई कचरा वाले को ही देना है। अब देखिए, स्रोत पर ही कचरे के फोर स्ट्रीम का जो है अलग अलग किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है कूड़े का। अब ज़्यादातर आप लोगों ने जगह जगह दीवारों पर भी लिखा है गीला कचरा, सूखा कचरा, हरा डस्टबिन, नीला डस्टबिन। बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि गीला कचरा कहाँ जाना चाहिए, सूखा कचरा कहाँ जाना चाहिए। गीला कचरा यानी जो आपका वेट वेस्ट है, यानी रसोई का कचरा, बचा हुआ भोजन, फलों और सब्जियों के छिलके, इन्हें खाद या बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और नए नियमों के तहत अब हर नागरिक को, हर गृहस्थ के लिए कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर कूड़ा देना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है। इसलिए अपने घर में ही इसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है कि हम सूखा कचरा अलग रखें, गीला कचरा अलग रखें। जो ड्राई वेस्ट है उसमें प्लास्टिक, कागज, गत्ता, धातु, कांच और रबड़, इसे रिसाइकिलिंग के लिए अलग से भेजा जाता है। अब सिंगल यूज़ यानी एक बार यूज़ होने वाले प्लास्टिक को बिल्कुल ना कह दें, ताकि कचरा कम हो। और ई वेस्ट भी घटाना बहुत ज़रूरी है। ये कदम जो होते हैं ना पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे तरफ से उठाए गए छोटे छोटे कदम है ना, वो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ताकि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, हम अगर छोटे छोटे बदलाव करें नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आप इस छोटी छोटी आदतों को अपनाएं। कहीं भी जाकर डिस्पोजेबल में आप चाय पीते हैं तो ना पीजिए, अपना स्टील का एक गिलास अपने साथ रखिए, या जैसे स्टील का गिलास तो वही रख सकते हैं जो ऑफिस जाते हैं, वो अपने साथ रखिए, या फिर वो कूलर वाली चाय पीजिए। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहें, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलें तो कपड़े या जूट का थैला साथ लेकर जाएं। प्लास्टिक की थैलियां, स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल का पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें। गीला सूखा कचरा अलग अलग करें। ज़रूरत के मुताबिक ही खरीदें। ज़्यादा चीज़ें खरीदने से, कबाड़ बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अब ई कचरा घटाने हैं, गैजेट्स को रिपेयर कराएं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को रिसाइकिल करें, और काम के जो उपकरण हैं जो ठीक ठाक हैं उन्हें दान भी किया जा सकता है। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम नहीं यूज़ करें, किसी को दे दीजिए, किसी के काम ही आएंगी, क्यों है ना, ठीक बात।

शगुन फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। अब चल रहा है अधिक मास, पुरुषोत्तमन मास या मल मास चल रहा है ना, 16 मई से शुरू हो चुका है। अब देखिए कुछ लोगों को पता ही नहीं है, अब बहुत सारी लोग ये सोच रहे हैं। आज मैं मेट्रो में आ रही थी तो कुछ लड़कियां भी यही पूछ रही थी कि यार ये पुरुषोत्तमन मास होता है क्या है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास जो कहते हैं, क्योंकि इतना सारा अब सोशल मीडिया है, रील्स हैं, तो लोगों को पता भी चल रहा है कि भाई अधिक मास चल रहा है। अब अधिक मास की सबको ये रहता है कि जिज्ञासा भी है कि है क्या, जिनको पता है उनको पता है और जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता देते हैं। अधिक मास हिंदू कैलेंडर का एक अतिरिक्त महीना है जो हर 3 साल में एक बार आता है। इसे पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से भी जाना जाता है। सरल शब्दों में जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, यानी फरवरी में 29 दिन आते हैं, ठीक उसी तरह हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक पूरा अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, जो इस बार ये ज्येष्ठ का महीना है, यानी जेठ का महीना है, जो 2 महीने का है। अब क्यों आता है? हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की चाल पर आधारित होता है। सौर वर्ष सूर्य का एक चक्र लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है, और चंद्रमा का जो वर्ष है वो एक चक्र लगभग 354 दिन का होता है। अब इन दोनों के बीच का हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ ही जाता है। अगर इस अंतर को ठीक ना किया जाए तो हमारे सभी त्यौहार धीरे धीरे अपने मौसम से आगे पीछे हो जाएंगे। इस अंतर को पाटने के लिए हर 32 महीने 16 दिन और 4 घंटे के बाद कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, इसी को अधिक मास कहते हैं। अब पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर महीने का कोई ना कोई स्वामी देवता होता है, लेकिन इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था, कोई देवता नहीं था, तो इसे अपवित्र मानकर मल मास कहा गया। दुखी होकर ये महीना भगवान विष्णु के पास गया, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना उत्तम नाम पुरुषोत्तम दिया। अब कहा कि मैं इस महीने का स्वामी हूँ। भगवान विष्णु का नाम मिलने के कारण ही ये महीना आध्यात्मिक रूप से सबसे पवित्र और फलदायी बन गया। अब फलदायी कैसे? ये महीना पूरी तरह से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। माना जाता है इस महीने में किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। इस महीने में केवल आध्यात्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ, भक्ति, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन या नया बिजनेस शुरू करने के लिए मांगलिक कार्य यानी इस महीने में नहीं होते हैं, लेकिन ये महीना सिर्फ पूजा पाठ के लिए है।

नगमा फिल्म में ये गीत आप सुन रहे थे शमशाद बेगम की आवाज में। एफएम गोल्ड पे चल रहा है कार्यक्रम घर आंगन। हम आज बात करेंगे हाथ के बने खिलौनों की। अब देखिए, हम इतने वातावरण को संभालने की बातें कर रहे हैं, आपसे जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट का आप ध्यान रखिए, तो खिलौने जो हैं वो क्यों प्लास्टिक के या किसी और मटेरियल के लेने हैं। हाथ से बने खिलौने केवल बच्चों के खेलने की वस्तु नहीं होते, बल्कि हमारी कला, संस्कृति और परंपरा का हिस्सा भी होते हैं। भारत में लकड़ी, मिट्टी, कपड़े, बांस और ऊन के बने खिलौनों की परंपरा बहुत पुरानी रही है। आज के समय में हैंडमेड टॉय बिजनेस भी एक अच्छा रोजगार और स्वरोजगार का माध्यम बनता जा रहा है। अब हाथ के बने खिलौनों के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लकड़ी के खिलौने आते हैं। अब बचपन में हम लोगों ने तो लकड़ी के खिलौने बहुत देखे हैं, आजकल भी मिलते हैं, लेकिन लोग सिंथेटिक खिलौने बच्चों को देना पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लकड़ी के खिलौने जैसे चंदपटना कर्नाटक के रंगीन खिलौने, मिट्टी के खिलौने जैसे गाँव और मेलों में लोकप्रिय होते हैं, कपड़े और ऊन के खिलौने जैसे टेडी बियर, गुड़िया, बांस और जूट के खिलौने जैसे जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, शैक्षणिक खिलौने होते हैं, बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने वाले पजल्स होते हैं। लकड़ी के हाथ से बने खिलौनों की विशेषताएं ये होती हैं कि वो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, सुरक्षित होते हैं और प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं। भारतीय संस्कृति की झलक हर खिलौने में अलग और विशेष होती है। छोटे कारीगरों को रोजगार मिलता है, व्यापार की संभावनाएं बढ़ती हैं। आज लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की जगह प्राकृतिक और सुरक्षित खिलौनों को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है, क्यों ये कचरा, इतना प्लास्टिक क्यों वेस्ट जनरेट करना है। इसी कारण हस्तनिर्मित खिलौनों की मांग भारत में और विदेशों में दोनों में बढ़ रही है। अब कैसे व्यापार शुरू किया जाए, आप ये भी तो सोचेंगे। घर से शुरुआत करें, कम पूंजी में छोटे स्तर पर काम शुरू किया जा सकता है। सोशल मीडिया, वेबसाइट और ई कॉमर्स के माध्यम से आप बिक्री की जा सकती है। आजकल तो बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है जहां अपना बिजनेस आप कर सकते हैं। स्थानीय मेले या प्रदर्शनियां भी लगा सकते हैं। हस्तशिल्प मेलों में स्टॉल लगाकर भी ग्राहक बढ़ाए जा सकते हैं। स्कूल और गिफ्ट शॉप से संपर्क कर सकते हैं। शैक्षणिक और सजावटी खिलौनों की अच्छी मांग होती है। अब खिलौनों की गुणवत्ता अगर अच्छी हो, रंग और सामग्री बच्चों के लिए सुरक्षित हो, आकर्षक पैकिंग करें, सोशल मीडिया पर प्रचार करें, उचित मूल्य रखें और सरकारी सहायता भी मिलती है। जी हाँ, भारत सरकार वोकल फॉर लोकल और हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अधिक जानकारी के लिए आप MSME मिनिस्ट्री या स्टार्टअप इंडिया इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हाथ से बने खिलौने भारतीय कला और परंपरा की पहचान है। ये व्यापार कम निवेश में शुरू होकर बड़े स्तर तक पहुंच सकता है और ये आपकी शौक भी तो है। ऊन के खिलौने आप बनाइए, कपड़े के खिलौने बनाती रहती हैं लेडीज, बना बना के, बुन बुन के, थोड़ा फूल, थोड़ा कुछ बनाती हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर स्टॉल लगाकर बेचती हैं। ये रचनात्मकता, गुणवत्ता और सही प्रचार पर ध्यान दिया जाए तो ये व्यापार रोजगार और आत्मनिर्भरता का अच्छा माध्यम बन सकता है, क्योंकि कम निवेश में शुरू कर बड़े स्तर पर पहुंचा जा सकता है। कोशिश तो कीजिए।

मासूम फिल्म की रचना आपने सुनी गौरी बप्पत, गुरप्रीत कौर और वनिता मिश्रा की आवाजों में। अब कुछ भी कहिए, महिलाएं ही घर का केंद्र है, ठीक है ना? क्योंकि अब देखिए, महिलाओं का हमारा कार्यक्रम है, लेकिन महिलाएं घर का केंद्र, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जयशंकर प्रसाद जी अपनी कामायनी में लिखते हैं, जी हाँ, कामायनी उनका एक महाकाव्य है, उसमें लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी के जीवन में जो प्रफुल्लता, शांति और आनंद है, वो उसकी अपनी उपलब्धि है, जी हाँ, क्योंकि वो हर हाल में खुश रहना जानती है। नारी का आनंद बहुत अर्थपूर्ण है, क्योंकि वो घर का केंद्र है। महिलाएं जो हैं वो घर का केंद्र होती हैं। अगर वो उदास हैं, दीनहीन हैं, थकी हुई हैं, हारी हैं, तो सारा घर परिवार उनकी जो परिधि में घूमता है ना, वो उदास और हारा हुआ हो जाएगा। इसलिए महिलाओं का खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर की जो धुरी है, घर का जो केंद्र है, वो महिलाएं हैं। एक स्त्री के जीवन में जो आनंद, शांति और प्रसन्नता होनी चाहिए, वो उसे नहीं मिल पा रही है। स्त्री का सुख अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो घर का केंद्र है। मैं बार बार एक ही बात इसलिए दोहरा रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए, और आप खुद भी महसूस कीजिए इस बात को कि आपके घर में जो महिला है वो घर का केंद्र है। यदि वही उदास, निराश या पराजित अपने आप को समझने लगेगी, जिसके चारों ओर पूरा घर, पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द घूमता है, तो सभी उदास और पराजित हो जाएंगे ना, है ना? और भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नारी के महत्व, शक्ति और सम्मान को दर्शाते हुए कुछ श्लोक भी हैं, जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा, आदर, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ कोई भी अच्छा कार्य फलभूत नहीं होता, यानी निष्फल हो जाता है। ऋग्वेद का कथन है कि गृहिणी ही घर कह

लाती है। नारी के बिना घर की कल्पना नहीं की जा सकती। जो पुण्यात्माओं के घर में स्वयं लक्ष्मी के रूप में, पापियों के यहां दरिद्रता रूप में, बुद्धिमानों के हृदय में बुद्धि रूप में और सज्जनों में श्रद्धा और कुल की मर्यादा के रूप में लज्जा रूप में निवास करती है, उसी देवी को हम नमस्कार करते हैं।

आशा भोसले, लता मंगेशकर की थी आवाज़ ही, फिल्म का नाम चोरी चोरी। जी हाँ, आप कैसे भुलाया भी जा सकता है, भुलाया ही नहीं जा सकता है घर की महिलाओं को, यही तो उनका स्वरूप है, क्योंकि वो घर का केंद्र है। और आज के समय में जो नारी है ना, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से भी चल रही है, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण सबसे प्रमुख विषय है। अब देखिए, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विकसित भारत की नींव बताते हुए इसे लागू करने की दिशा में तेजी दिखाई गई है। आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली बहना जैसी योजनाओं का सक्रिय क्रियान्वयन भी चल रहा है और उन पर काम चल रहा है। लोग, अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो अपने आसपास के जो दफ्तर हैं वहाँ पता कीजिए। इसके अलावा छोटे व्यवसायों के लिए भी महिलाओं को बिना गारंटी ऋण सहायता दी जा सकती है। ये सब चीज़ें ना साइट्स पे उपलब्ध हैं। आजकल सोशल मीडिया है, आप डिजिटल हो चुका है इंडिया, तो आप गूगल पे या आप किसी भी ब्राउज़र पे टाइप कीजिए महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो बिना गारंटी ऋण भी आपको सरकार दे रही है। अब बदलता सामाजिक दृष्टिकोण भी इसमें काम आ रहा है। अब महिलाएं न केवल घरेलू कार्यों तक सीमित हैं, बल्कि वो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। संक्षेप में यानी शॉर्ट में मैं कह सकती हूं कि आज की भारतीय नारी सशक्तिकरण की ओर मजबूती से बढ़ रही है। उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए अभी और भी प्रयास किए जा रहे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन घर में ये सब प्रयास तो चल ही रहे हैं, लेकिन घर में मैंने कहा ना, महिलाएं घर का केंद्र है, उन्हें खुश रखिए। उन्हें अगर खुश रखेंगे तो महिलाएं अगर खुश रहेंगी तो घर भी आनंदित रहेगा। इसलिए अगर वो रूठ जाएं तो मना लीजिए जरूर।

हैं छोटी छोटी खुशियाँ और इनको बस पकड़ लीजिए। और ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में आज का पंची फिल्म से। मुझे यानी राधा को इस कार्यक्रम से दे इजाज़त। नमस्कार, सुनते रहिए ये गीत।

0: 당근.
1: 아스티트와 아프게 벽티트와 세주라. 아프가 갈 앙근.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज

12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और आज बात हो रही है फिल्म तीन देवियां की। श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक की है जो एक साथ तीन अलग अलग स्वभाव की महिलाओं के आकर्षण में फंस जाता है। उस दौर के हिसाब से ये कहानी काफी मॉडर्न और काफी बोल्ड मानी गई थी। फिल्म के का जो मुख्य किरदार है वो है देवदत्त आनंद, जिसे निभाया देवानंद ने। देवदत्त एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी में काम करता है, कविताएं लिखता है और सपनों की दुनिया में जीता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में तीन अलग अलग महिलाएं आती हैं, मासूम और सरल नंदा, ग्लैमरस अभिनेत्री कल्पना और रहस्यमयी और अमीर महिला सिमी। तीनों उसे प्यार करने लगती हैं और देवदत्त खुद भी नहीं समझ पाता कि उसका असली प्यार कौन है। यही उलझन इस फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म में रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, स्टाइल भी है और सबसे बढ़कर शानदार संगीत है। श्रोताओं, बात कर लेते हैं इस फिल्म की स्टारकास्ट की, जो आपको पता चल ही गई होगी। देवानंद साहब हैं, नंदा है, सिमी ग्रेवाल, कल्पना मोहन और आईएस जौहर। और एक खास बात यह है इस फिल्म की कि फिल्म में रेडियो की दुनिया की मशहूर आवाज अमीन सयानी भी सुनाई देते हैं, जो उस समय श्रोताओं के दिलों पर राज किया करते थे।

श्रोताओं, फिल्म के अगर ये देखा जाए कि क्या उसका बजट रहा और कितना उसमें कमाई की, तो इसके आंकड़े प्रॉपर तरीके से तो नहीं पता, लेकिन उस दौर के हिसाब से ये एक मिड बजट स्टाइलिश रोमांटिक फिल्म मानी जाती है और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया। खासकर उसके संगीत ने फिल्म को एक लंबे समय तक लोकप्रिय बनाए रखा। तीन देवियों को कोई बड़े अवार्ड्स भी नहीं मिले, लेकिन उनके संगीत की और प्रस्तुति की हमेशा तारीफ हुई है और इसे उस समय की एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। और लोकेशंस ज़्यादातर महबूब स्टूडियोज़ में ही हुई। उस दौर की मुंबई की सड़कें, बस और आलीशान बंगलों को भी बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। अगर तीन देवियों को आज भी याद किया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका संगीत। संगीत दिया था महान संगीतकार SD बर्मन ने और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। तो सुन लेते हैं इस फिल्म का वो गीत जो आज भी

और आइए अब श्रोताओं के संदेशों को पढ़ देते हैं। हमारे पास सबसे पहला संदेश आया है वीरम गांव गुजरात से अजीत भवसार, प्रमिला भवसार और प्रवीण सुल्ताना का। साथ ही छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा जुड़ रहे हैं। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदेव सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह जुड़ रहे हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता पी एस नोहावकर, निर्मला विशाल, नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहरेकर। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जुड़ रहे हैं। सुरेश जाधव, अनीता जाधव और नेहरू चौक पेठर से ये हमारे श्रोता हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से जुड़ रहे हैं। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल का संदेश। इसके अलावा अजीत भवसार जी का संदेश है जो कि काफ़ी लंबा है, लेकिन ये पूरा संदेश तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ आपके नाम को हमने यहाँ कार्यक्रम में शामिल ज़रूर कर लिया है। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या जुड़ रहे हैं। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। पहाड़गंज मुल्तानी डाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का संदेश। साथ ही संदेश मिला है सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन का। तो हमारे ये सभी श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने संदेश भी हमको भेजे हैं। तो श्रोताओं, बात कर रहे हैं हम फिल्म तीन देवियां की और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, ये जो फिल्म है ना, इसकी खासियत ये भी है कि ये फिल्म आंशिक रूप से ब्लैक एंड वाइट और आंशिक रूप से रंगीन है। उस दौर में ये प्रयोग काफ़ी अलग माना गया था। इसके अलावा ये जो फिल्म है, इसका अंग्रेजी वर्जन भी बनाने का सोचा था, ओ बॉय एंड थ्री गर्ल्स, इस पर भी काम हुआ, जिसमें संगीत दिया था एस डी बर्मन के सुपुत्र आर डी बर्मन ने, लेकिन ये जो फिल्म है ये रिलीज़ नहीं हो पाई। और इस फिल्म की कहानी में थोड़ा सा पश्चिमी टच था, अर्बन रोमांटिक फिल्मों के गाने जो हैं इसमें ज़्यादातर कॉपी करने की कोशिश की गई थी, इस तरह के गाने इसमें डाले गए थे कि अंदाज़ थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो गया था। उस समय में ये जो कथानक था इस फिल्म का, ये भी काफ़ी बोल्ड था कि एक व्यक्ति तीन महिलाओं के साथ एक टाइम में किस तरह से प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ जाता है, तो उस दौर में ये एकदम अलग था। और एक और बात यह है कि उस समय दर्शकों ने फिल्म को ख़ास तौर पर संगीत, फैशन और देवानंद के अंदाज को सबसे ज्यादा पसंद किया था। तीन देवियां सिर्फ एक ऐसी फिल्म नहीं है जो एक साधारण फिल्म हो, ये एक 60 के दशक की रोमांटिक सोच को, संगीत को और स्टाइल का एक आईना था। उसे देखकर बहुत सारे लोगों ने अपने स्टाइल को भी चेंज किया और उस समय पे कहा भी जाता था कि देवानंद जो है ना एक स्टाइल आइकन बन गए थे। और गाना जो है, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये तो जैसे हमने इस पर पहले भी जिक्र किया कि ये गाना अब तक भी रोमांटिक गानों में से एक गाना माना जाता है। अब सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

श्रोताओं, इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज़ दी थी। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें अपने मेल्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। और अब इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी 2:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार में। छोड़े जाते हैं आपको इस गीत के साथ।

0: इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवीं खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की प्रधानगी हेठ क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग नवी दिल्ली विच हुई है। मीटिंग विच हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहलकदमी बारे सहमति बनी है। गृहमंत्री अमित शाह ने अज राजस्थान विच भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद से सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। बीएसएफ के जवानों गलबात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के तीन दिन दौरे से गंगटोक पहुंच गए ने। पंजाब विच 8 नगर निगम 75 नगर कौंसलों से 20 नगर पंचायतों की चोणों लिए अज वोटा पै रहे ने। दोपहर 12 बजे तक 31.6% वोटिंग दर्ज की गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला च पहले क्वालीफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की प्रधानगी हेठ क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग अज नवी दिल्ली विच हुई। आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैनी वोंग, जापानी विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मीटिंग विच हिस्सा लिया। क्वाड देश हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहलकदमी और समुद्री खेत्र विच गतिविधियां ते हालत की निगरानी लिए एक सांझी संचालन स्थिति ते सहमत हुए ने। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे, फिजी विच एक अजमायशी बंदरगाह प्रोजैक्ट और समुद्र हेठां केबलों विछाउण ते सहयोग बारे एक माहर पैनल स्थापित करन ते विचार करेगा। उन्होंने कहा कि मीटिंग के मुख्य नतीजों विचों एक क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क नूं अंतम रूप देना सी। क्वाड देशों ने भारत अमरीका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क ते भी दस्तखत किए ने। अज हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा तकनालोजी प्रबंधन नीति अंतरराष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और हंगामी प्रतिक्रिया अभ्यासों के खेत्रों में क्वाड पहलकदमी का ऐलान भी किया गया। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग तो बाद अपने बयान में डॉ जयशंकर ने जोर देकर कहा कि क्वाड देशों में सहयोग को होर मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग उसारू रही और इस विच मुख तौर पर हिंद प्रशांत नाल संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रियों ने सुरक्षित और निर्विघन समुद्री व्यापार के नाल नाल पछमी एशिया च स्थिरता लियाने लई सफारती कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिता है। केंद्रीय वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा विच कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी नाल मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों शुभकामनावां दित्तियां। दोवां आगुआं ने दवल्ले सहयोग नूं होर मजबूत करने बारे सकारात्मक अते दूरदर्शी विचार वटांदरा कीता। ओ भारत कैनेडा व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते सेपा नूं छेती पूरा करन ते भी सहमत होए। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोहां देशां लई विकास अते खुशहाली लई नवे मौके खोलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्नी दे हालिया भारत दौरे नूं दवल्ले संबंधां लई इक महत्वपूर्ण कदम दस्सिया। श्री गोयल ने कनेडियन विदेश मंत्री अनीता नंद नाल मुलाकात की अते व्यापार निवेश अते तकनालोजी सहयोग वधाउण ते जोर दिता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज राजस्थान विच भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद ते सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने इलाके विच तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों नाल गलबात की अते देश दीआं सरहदां दी राखी लई उन्हां दे समर्पण की शलाघा की। दौरे दौरान गृहमंत्री ने राज के सरहदी इलाकों लई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूजे पड़ा की शुरूआत भी की। इस पहलकदमी तहत अंतरराष्ट्रीय सरहद के नाल नाल लगते पिंड सिक्ख्या सड़कां बिजली और रोजगार के मौकों समेत बुनियादी ढांचा और जरूरी सेवावां नूं मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद सन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम के तीन दिन दौरे पर गंगटोक पहुंच गए।

0: ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੁਆਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਾਂਝੂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਤੇ ਗੰਗਟੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 20 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 31.6% ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वजारा खारजा की मीटिंग की सदारत की। भारत और अमेरिका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई, कनकनी और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने रियासत के सरहदी खित्तों में दरख्शा गांवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीजा हज अदा कर रहे हैं और IPL क्वालिफायर 1 में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में ख़त्म हो गई। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वज़ीर खारजा तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने शिरकत की। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने दीगर मुल्कों की मदद करते हुए क्वाड मुल्कों के माबैन इश्तराक को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड के ममालिक खुले मुआशरे वाले मुल्क हैं जो खुशहाली के फरोग के खातिर इख्तिरा और तख्लीक को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को उजागर किया कि जमहूरी मुल्क होने के नाते क्वाड के मुल्कों ने दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने पर भी अपनी तवज्जो मरकूज की है।
2: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
1: मीटिंग के बारे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बाहमी राब्तों में दुनिया के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया गया और क्वाड के चार मुल्कों ने खास तौर पर भारत बहरुल काहिल खित्ते से वाबस्ता उमूर पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने कहा कि बहरी शोबे में इश्तराक में लगातार वसत आई है, जिसमें निगरानी से मुतालिक बेदारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, ज़ेर समंदर केबल, तरबियत, सलाहियत साजी, इंसानी हमदर्दी की इमदाद और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने की सरगर्मियाँ शामिल हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड मुल्कों ने उन शोबों से मुतालिक जिनमें वो इश्तराक कर सकते हैं मजीद पेशरफ्त की है।
3: On the areas of cooperation, and it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today, I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action.
1: जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारजा आज सेवा तीर्थ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। उधर वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज सुपहर ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब के साथ बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के 3 रोज़ा दौरे पर गंगटोक पहुंच गई हैं। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سینئر شخصیتوں نے کیا۔

0: penalty in qualifier 2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: Will become even more important to the world.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने

0: है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित BSF मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 के से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण

0: उन्हें पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज़्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के

0: सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर निजे प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। और आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में उस इंसान की जो कैमरे के सामने बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन उसके बनाए किरदार, डायलॉग और फिल्में करोड़ों दिलों में बसती है। ये कहानी है मशहूर निर्देशक और निर्माता आदित्य चोपड़ा की। एक ऐसा नाम जिसने रोमांस को नए अंदाज में परिभाषित किया और हिंदी सिनेमा को दुनिया भर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज बात हो रही है मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक यश आदित्य चोपड़ा की। दोस्तों, आदित्य चोपड़ा का जन्म 21 मई 1971 को मुंबई में मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के यहाँ हुआ था। फिल्म का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला था। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं आदित्य फिल्म सेट्स पर कैमरा, लाइट और स्क्रिप्ट को समझते थे। और जब उन्होंने फिल्में बनाना शुरू किया तो वो एक इतिहास बन गया। उन्हें बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक माना जाता है। आदित्य चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता यश चोपड़ा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी, जहाँ उन्होंने चांदनी और लम्हे जैसी फिल्मों में काम करके निर्देशन की बारीकियों को सीखा था।

श्रोताओं, लेकिन असली तूफान जो लेकर आए ना आदित्य चोपड़ा, वो लेकर आए थे 1995 में। सिर्फ 23 साल की उम्र में आदित्य चोपड़ा ने बनाई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था। फिल्म में थे शाहरुख खान और काजोल। राज और सिमरन की प्रेम कहानी ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। कहा जाता है कि पहले शाहरुख खान इस फिल्म को करने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वो एक रोमांटिक हीरो की इमेज नहीं चाहते थे, लेकिन आदित्य ने उन्हें मनाया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। डीडीएलजे सिर्फ सुपरहिट नहीं हुई बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में से मानी जाती है। मुंबई के मशहूर मराठा मंदिर में ये फिल्म कई वर्षों तक लगातार चलती रही, बहुत सारे अवार्ड जीते, और आदित्य चोपड़ा रातों रात बॉलीवुड के स्टार निर्देशक भी बन गए। और ये बताते हैं कि इस फिल्म का आइडिया उन्हें आया था एक ट्रेन में सफर करते वक्त, और क्या मैजिक उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से किया।

उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने संभाली यशराज फिल्म्स की जिम्मेदारी। उन्होंने इस बैनर को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म कंपनियों में शामिल कर दिया। उनके नेतृत्व में कई शानदार फिल्में बनी, जैसे मोहब्बतें, वीर जारा, रब ने बना दी जोड़ी, बंटी और बबली, धूम, वॉर, पठान, और इन सब ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े। आदित्य चोपड़ा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो नए टैलेंट्स को मौका भी देते हैं। उन्होंने कई कलाकारों को लॉन्च किया या बड़ा ब्रेक दिया, जिनमें अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा और आज ये सभी बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं। आदित्य चोपड़ा की फिल्मों में भावनाएं बहुत गहराई से दिखाई देती हैं। उनकी कहानियों में परिवार, प्यार, रिश्ते और भारतीय संस्कारों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया जाता है। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि दर्शकों को भावनात्मक सफर पर लेकर जाते हैं, और ख़ास बात यह है कि उनकी फिल्म के गाने हमेशा ही सुपरहिट होते हैं।

श्रोताओं, आदित्य चोपड़ा को बेहद परफेक्शनिस्ट माना जाता है। उन्होंने बहुत लंबे समय तक फिल्मों में कॉन्सेंट्रेटली अपना काम किया, बहुत ज़्यादा मीडिया इंटरव्यू भी नहीं दिए। यशराज स्टूडियो को आधुनिक तकनीक से लैस करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। वो मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक इमोशन है। अगर 90 के दशक के बाद बॉलीवुड में रोमांस का चेहरा बदला तो उसमें आदित्य चोपड़ा का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भारतीय फिल्मों को इंटरनेशनल दर्शकों तक पहुंचाया। NRI दर्शकों के बीच हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता को बढ़ाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है।

श्रोताओं, आदित्य चोपड़ा को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्मों के लिए कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 1995, 2005 और 2007 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।

आदित्य चोपड़ा को सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से यश राज फिल्म्स के तहत उनके काम के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे यानी विजेता चतुर्वेदी को दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 3 बजने को है। लीजिए प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी ठीक वैसे ही ना, जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही, जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
2: जी,
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
3: आइए।

0: जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं?
1: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी,
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी,
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी,
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
1: जी,
0: ये 1 से 2 सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
0: जी,
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी,
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओह यस।
2: ऑलराइट, सो टेल मी, व्हाट डू यू सी इन अ जू?
3: टाइगर, अ लायन,
2: यस,
3: मंकी, बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड,
2: वेरी नाइस,
3: कैमल, जिराफ एंड सो ऑन।
2: ओह वाओ। So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: वी आर गोइंग।

0: This was Elephant. This was Monkey. And this was Tiger. This was Polar Bear. And this was Skunk. And this was Kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: जय जेरापुर, जय भारत।
7: जय जेरापुर, जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह।
8: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
9: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
8: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
9: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
10: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।

0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
1: जी।
0: वहां के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
1: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
1: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज, वाकई

0: जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
1: जी मंत्री जी।
0: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
4: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
2: जी,
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
1: जी,
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
5: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
5: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
4: बिल्कुल।
5: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
5: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: Bana...
1: तुम चारों तरफ से गिर चुके हो।
0: ये क्या है?
1: You are under arrest.
0: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
1: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: हाँ। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
1: शाबाश, शाबाश, सालार जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
0: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है।

0: बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
1: छोड़ो मुझे।
2: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
3: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
4: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
0: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
4: देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
0: ये नामुमकिन है।
4: Why?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
4: तो नहीं मानोगे। देखो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
4: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
5: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: वो सुना करता था मैं
1: जी।
0: इस तरीके से मेरा शौक शुरू हुआ
1: जी। तो अब जो शौक शुरू हुआ तो किसी खास चीज में तो होगी आपकी दिलचस्पी?
0: जी, खास चीज में ये थी कि मैं शौक बढ़ता रहा, उम्र भी बढ़ती रही, करते करते करते 81 में मेरा शौक पहुंचता गया। 81 में मेरी उम्र मेरे ख्याल से 14-15 साल की हो गई होगी। तो उस वक्त मेरा ताल्लुक जो संगम प्रोग्राम से बहुत था, विविध भारती पे संगम प्रोग्राम आया करता था, उसमें उसमें फरमाइश आया करती थी मजनू का ठेला से जंगमोहन सानी, पम्मी सानी, शंटू और सेली बाबा, और झिलमिल कलून शिवा खंड से जनाब मोहम्मद यूसुफ उस्मानी, कमाल यूसुफ उस्मानी और उनके उस्मानी परिवार के सारे सदस्य।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरीके से मैंने कहा यार इनसे तो मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मैं बाकायदा शिवा खंड गया हूँ, उनसे मुलाकात करी है मैंने।
1: क्या बात।
0: तो इस तरीके से मैं फिरता रहा और जहाँ जहाँ गया, मैं जिस शहर में मैं गया, किसी जैसे किसी शादी में चले जाते हैं या किसी पार्टी में चले जाते हैं या घूमने चले जाते हैं, वहाँ मैं पुराने रेडियो की दुकानें जरूर ढूंढा करता था। अच्छा हर जगह मिल जाया करती थी। अब वो दुकानें टीवी की हो गई हैं, रेडियो तो खत्म हो चुके हैं। तो मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा भाई कोई तुम्हारे पास कोई पुराना रेडियो हो तो मुझे देना
1: जी।
0: तो 100, 200, 500 जो मांगता था मैं उसको दे अपने पास ले लिया करता था। इस तरह मैंने कलेक्शन हुआ मेरा।
1: क्या बात।
0: और लाल किले के पीछे एक बाजार, दिल्ली चलो पार्क है, वहां पर एक बाजार लगता था, वहां से मैंने मर्फी के कई रेडियो उठाए वहां से।
1: क्या बात।
0: और उनको ठीक कराता हूँ। बाकी एक साहब मौजूद है, सतबीर सिंह नाम उनका नाम है, यमुना विहार C3 में रहते हैं वो।
1: क्या बात है। तो मतलब रेडियो के दीवाने आज भी मौजूद हैं। तो सामीन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आकाशवाणी का जो सरकारी नाम पड़ा था वो तकरीबन 1956 में बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत हिंद ने उसे आकाशवाणी का नाम दिया था।
0: जी जी।
1: और 1954 में संगीत का जो एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, मौसीकी का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, और मौसीकी के नाम से देखिए आप जैसे दीवाने यहाँ मौजूद है। और 1957 में जिस रेडियो की आप बात कर रहे हैं, जब लोग सुना करते थे, विविध भारती का आगाज होता है, जो रेडियो के उरूज का वक्त माना जाता है कि विविध भारती ने लोगों के दिलों पे राज किया।
0: जी जी बिल्कुल,
1: है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो सामीन हम आपको ये भी बताते चले कि मौजूदा वक्त में तकरीबन 99% लोगों तक रेडियो की रसाई मौजूद है, और ये नशरियात 23 जबानों में और 179 बोलियों में हम नश्र करते हैं और लोग सुनते आए हैं। आपने जिन लोगों के नाम लिए, जब मैं उर्दू सर्विस में था तो इनकी फरमाइशें आया करती थी और इनके फरमाइशों पे हमने बहुत से नगमात उनको सुनाए हैं।
0: जी।
1: तो इन नामों को सुनकर हमें लगता है कि हाँ रेडियो के दीवाने कैसे हुआ करते थे, और आपको देखकर महसूस भी हो रहा है।
0: जी, वो एक कोर्ट रोड बागपत यूसुफ आजाद वसीला और कमाल यूसुफ उस्मानी से तो मैं कई बार मिल चुका हूँ, हालांकि नहीं रहे, लेकिन मैं बाकायदा गया हूँ उनके पास मिलने के लिए। और एक प्रोग्राम जो आया करता था मनचाहे गीत, उसमें बहुत फरमाइशें आया करती थी।
1: जो रेडियो की दीवानगी आई आपके अंदर, तो सिर्फ मौसीकी से, फिल्मी नगमों से या कुछ और भी?
0: नहीं, उसकी जो बनावट थी ना अंदर से, वो मुझे अट्रैक्शन करती थी।
1: अच्छा, रेडियो की जो सूरत थी, रेडियो का जो पूरा जेस्टर था जो सामने हमारे सामने,
0: वो बाकायदा जो उसमें जो स्क्रीन थी, जो सुई चला करती थी या कैसे चलती है, एक दिमाग होता है ना, टेक्निकल दिमाग होता है कि कैसे चलती है, क्या है यार अंदर, क्या जलता है। मैं बाकी तो उसको खोल के देखा करता था। आज भी मेरे पे एक कलेक्शन एक ऐसा है मुझे कि बॉडी खत्म हो चुकी, लेकिन बाकायदा उसको मैंने पैक करके रखा है, उसको झाड़ता हूँ, उसको देखता हूँ, निहारता हूँ कि यार कैसे लोग थे, कैसे सच्चे लोग थे, कैसे सच्चाई की चीज बनाया करते थे, कि तोड़ के भेजोगे जब भी 350 रुपये की बिक जाएगी। और आज खत्म हुआ फेंका, खत्म हुआ फेंका।
1: जी देखिए, कदरें बदलती रहती हैं, ज़माना बदलता है, और ज़माने के एतबार से हर चीज़ें बदलती रहती हैं। इंसान भी बदला है, तो जाहिर सी बात है इंसान का रख रखाव, उसकी चीज़ें भी बदली हैं। तो मैं आपसे ये अब जानना चाहूँगा उस्मानी साहब, कि उस ज़माने में ठीक है आपको रेडियो की शक्ल व सूरत, उसकी बनावट से मोहब्बत थी, रेडियो का कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपके दिल को छू गया?
0: छाया गीत।
1: छाया गीत,
0: छाया गीत, क्योंकि छाया गीत उस वक्त ऐसा हुआ करता था, खाना खा के हम लेट जाया करते थे, और जब पहले एक हेडफोन, असल में वाली साहब आवाज सुना करते थे, वो नाराज होते थे, तो मैं पहले एक कान का आया करता था, वो लगा के मैं सो जाया करता था, लेटा करता था तारों के नीचे, सफेद चादर बिछाकर, और छाया गीत चलता था। छाया गीत में जो पेश करने वाले होते थे, एक कमल शर्मा और निम्मी मिश्रा और ममता सिंह, ये इस अंदाज से पेश करते थे जैसे कि माँ लोरी दे रही।
1: अरे वाह, क्या
0: नींद आ जाया करती थी।
1: नींद आ जाएगी।
0: और कभी कभी तो रेडियो सुबह बंद किया करता था, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से जो शम्मे फरोजा आया करता था तो वो सुन के सोया करता था लास्ट में।
1: क्या बात है, शम्मे फरोजा वाकई बहुत अच्छा,
0: वो सुन के सोया करता जब रेडियो बंद करता था, अच्छा भाई फिर सुबह सुनेंगे।
1: जी सही फरमाया आपने। ये कहा जाता है कि जो हुकूमत है हमारी हुकूमत हमारे सारी चीज़ों का ख्याल रखती है और रेडियो और टेलीविज़न के जरिए वो इंफोटेनमेंट देती है, हमें इंफॉर्मेशन भी देती है और हमारा एंटरटेन भी करती है और हमें काबिल भी बनाती है। अब जाहिर सी बात है यही रेडियो है जिसमें क्लासेस भी होती थी और आज भी होती हैं क्लासेस, लोग पढ़ते हैं, जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो इस रेडियो से पढ़ते रहे हैं, आज भी पढ़ते रहे हैं। तो वाकई आपको सुनकर ऐसा लगा कि वाकई इंफोटेनमेंट का जो एक नज़रिया था वाकई वो नज़रिया लोगों ने एक्सेप्ट किया और लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया, खातिर खा फ़ायदा भी उठाया उससे। तो उस्मानी साहब अब ये बताएं कि रेडियो कल यानी जब आप जवान थे और आज जब मैं जवान हूँ, दोनों में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं?
0: सर फ़र्क तो बनावट में तो बहुत आ गया है
1: जी,
0: प्रोग्राम में भी बहुत आ गया है
1: जी,
0: क्योंकि पहले फरमाइशें आया करती थी उससे थोड़ा सा हम जुड़ जाया करते थे, जैसे कि हम दिल्ली में बैठे हैं, महाराष्ट्र की फरमाइश आ गई, लगता है यार महाराष्ट्र वाले करीबी हैं, इसलिए एक काफ़ी जगह मशहूर हुई हैं इन फरमाइशों से। काफ़ी जगह ऐसी जैसे कि गंज डूंडवाड़ा मैंने कभी नहीं देखा,
1: बिल्कुल
0: गंज डूंडवाड़ा उत्तर प्रदेश से बहुत फरमाइशें आती थी और सब एकता कॉलोनी रहते थे, सीताराम कांगड़ा बबीता बोझ, ये ऐसे से कभी एकता कॉलोनी हम गए नहीं लेकिन ऐसा लगता था कि हम अपने दिल के करीब है।
1: बिल्कुल
0: मैंने आज तक ये मजनू का ठेला नहीं देखा, मजनू का ठेला से कितनी बचपन से फरमाइश सुन रहा हूँ, मजनू का ठेला से जगमोहन सहनी और एक कुक्की राजा मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन कुक्की राजा ऐसे मेरे दिमाग में बसा हुआ है कि मैंने बाकायदा उसका जिक्र किया इसके अंदर अपनी लिखाई में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। उस्मानी साहब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं 2010 से लेकर 2017 तक आपकी फरमाइश, आपकी पसंद और तामिल इरशाद करता रहा और इसमें जो फरमाइशें आया करती थी ला महदूद, मतलब कोई उस कहा नहीं होती थी, इतनी फरमाइशें आया करती थी और उन फरमाइशों को पढ़कर वो सारे नाम जो आप नाम ले रहे हैं ये सारे नाम अजबर हो गए थे।
0: जी, जी,
1: ऐसा लगता था कि ये लोग क्या करते हैं, रोज़ इनके ख़त आते हैं और खतों तो एक नहीं, रोज़ाना सैकड़ों ख़त आते हैं और सैकड़ों ख़तों में से उनका नाम आ जाए, यानी हज़ारों ख़त हमारे पास आते हैं और उसमें से मुश्किल

0: जवाल तो नहीं कहूंगा, लेकिन रेडियो के उरूज को आपने
1: जी जी
0: देखा
1: जी
0: है।
1: जी
0: जमाने ने बहुत तेजी के साथ तरक्की की है, और तरक्की का मामला ये रहा है कि आज आपकी उंगलियों पे वो सारे नगमात मिल जाते हैं। पहले ये था कि नगमा सुनने के लिए आपको टेप रिकॉर्डर निकालना होता था, मोबाइल के दौर में आप
1: जी
0: एक
1: जी
0: क्लिक करते हैं और सारी चीजें आपके
1: आ
0: पास
1: जाती हैं
0: आ जाती है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: क्या लगता है आपको कि वो जमाना बेहतर था या आज का जमाना
1: सर वो
0: बेहतर
1: ज़्यादा
0: था,
1: बेहतर था।
0: क्यों?
1: वो इसलिए कि अब रेडियो में

0: है आपको कि वो जमाना बेहतर था या आज का जमाना
1: सर वो
0: बेहतर
1: ज्यादा बेहतर था।
0: क्यों?
1: वो इसलिए कि अब रेडियो में इस वक्त मेरे बाद जो रेडियो वो गूंगे हो चुके हैं, उसमें या तो मैं एफएम का इंस्ट्रूमेंट लगवाऊं जब वो बोलेंगे, या फिर पहला बैंड सुनता रहूं जिसको एम कहते हैं,
0: ठीक है।
1: उसके अंदर कोई खास प्रोग्राम नहीं आते, खबरें ज्यादातर आती हैं और कहानियां आती हैं, किस्से आते हैं, रागनी आती हैं। अब हम उससे बहबेर हैं थोड़े से, लेकिन फिर भी उस रेडियो को जिंदा रखने के लिए मैं एम सुनता हूँ। टीवी पर हम देखते हैं उससे ज्यादा मजा सुनने में आता है।
0: उससे ज्यादा मजा सुनने में
1: जी
0: आता है, लेकिन आज सुनने का तो वो बदल गया है।
1: अरे सब बिल्कुल भी कुछ भी बदल गया हो, लेकिन हमारा तो दिल वही है आज भी कि मर्फी का रेडियो, फिलिप्स का रेडियो, उसके अंदर सुने, चाहे कुछ ना आ रहा हो, खाली टू नहीं आ रही हो। एक एक प्रोग्राम आया करता था अनुरंजनी विविध भारती पर, 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। मैं दोपहर को छत पर धूप में टांग अपने फैलाई और गाना वो लगाया अनुरंजनी, उसमें सिर्फ ट्यून आती थी शास्त्रीय संगीत वगैरह, और मैं आराम से अपने दोपहर की नींद भर लिया करता था। क्या मज़ा था, वो टीवी में मज़ा थोड़ी है।
0: चलिए बेहतर है। तो आखिर में कोई पैगाम?
1: जिंदगी के बारे में 2-3 लाइन लिखी मैंने नहीं, विविध भारती से लिखी मैंने,
0: जी।
1: उससे मैंने नोट करी। जिंदगी एक गिफ्ट है, उसको कबूल कीजिए।
0: क्या बात।
1: जिंदगी एहसास है, उसे महसूस कीजिए। जिंदगी एक प्यार है, बांट लीजिए। जिंदगी एक मुस्कान है, मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी एक जुताई है, सब्र कीजिए। जिंदगी एक आंसू है, पी लीजिए। जिंदगी आखिर जिंदगी है, जी लीजिए।
0: जी लीजिए, क्या बात है, बहुत खूब। तो सामीन इकराम, ये थे जनाब मुदस्सिर उस्मानी साहब। इन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात भी बताए और रेडियो से वाबस्तगी के साथ साथ रेडियो से मोहब्बत का भी जिक्र किया, और रेडियो के साथ न सिर्फ इन्होंने अपनी दिलजोई की बल्कि रेडियो से बहुत कुछ सीखा भी, समझा भी, और रेडियो के दोस्तों को भी याद किया और खुलकर याद किया, उन लोगों का नाम भी लिया। और जाहिर सी बात है, हमारे जो सामईन सुन रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग भी सुन रहे हों जिनका इन्होंने नाम लिया, और वाकई वो सब रेडियो के दीवाने हैं। आप सबको मैं सलाम करता हूँ, आपकी मोहब्बतों का एतराफ़ करता हूँ और आपकी मोहब्बतों की कद्र करता हूँ। तो सामईन, इस दिलचस्प गुफ्तगू के बाद आइए आपको सुनवाते हैं एक तकरीर मोहतरमा डॉक्टर शाहिना खान से। तकरीर का मौजू है रिफत सरोश की हालात ज़िंदगी। सामीन इकराम, ये भी वाजह कर दूं कि डॉक्टर साहिबा ख़ुद एक ब्रॉडकास्टर रही हैं और रिफत सरोश साहब की साहबजादी भी हैं। तो लीजिए, समात कीजिए।
2: घुंघरू से बजाती हैं तन्हाइयां कमरे में, कमरे की हर एक शय पर 100 नक्श हैं यादों के। आंखें खोलते ही जिंदगी भर 30 नवंबर 2008 तक मैंने जिनको देखा, जिनसे जिंदगी जीना सीखा, चलना, हंसना, बोलना, खाना, गाना बजाना, ब्रॉडकास्टिंग करना, शायरी करना, ड्राइंग पेंटिंग करना, बस यूं समझिए कि पल पल सांस लेना जिनसे सीखा। जी अंदाजा तो आपका सही है, मैं शाहिना खान जिक्र कर रही हूँ अपने वालिद साहब जनाब सैयद शौकत अली उर्फ रिफत सरोश का, जो ब्रॉडकास्टिंग और उर्दू दुनिया में एक जाना माना नाम है। उत्तर प्रदेश, जिला बिजनौर, तहसील नगीना में 2 जनवरी 1926 को एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जो दुनियाए शेर व अदब में रिफत सरोश के नाम से मशहूर हुआ। जनाब रिफत सरोश, कशीदा पेशानी, चश्मे के पीछे जहीन आंखें, मुजस्सिम चेहरा, लंबा ऊंचा कद, भरे भरे रुखसार, शहद अफशाना करने वाली लब, पुरवकार दिलकश आवाज, चौड़ा चेहरा, सांवली रंगत के थे। रिफत सरोश जिस महफिल में जाते थे वहां सबको अपनी मोहब्बत और फन से मुतासिर जरूर करते थे। उन्होंने कभी भी किसी नशे की लत नहीं डाली। शायद अपनी इन्हीं खूबियों के बदौलत वो 82 साल तक सरगर्मी अमल रहे। बड़े बड़े हादसात और बीमारियों का भी खंदा पेशानी से मुकाबला किया। अपनी मुस्कुराहटों, साफ गोई, दयानतदारी, दोस्त नवाजी, अदब पैरवी, मेहनत तो मोहब्बत से काम करने की आदत की बदौलत वो फरिश्ता ही नजर आते थे। उन्होंने कभी भी ब्रॉडकास्टिंग

0: मौत आवाज देने लगी है मुझे। कोई है इस कलम को जो गिरने न दे, इस अमानत को जो नस्ल आदम की मीरास है मुझसे लेकर नई नस्ल को सौंप दे। जी हम हैं रिफत सरोश की नई नस्ल और उनका एक शेर है अपने बच्चों के लिए। रक्सा है नवेद की आंखों में मुस्तकबिल के रोशन खाके, जावेद शबाना शाहीना सब मिलकर हंसते हो जैसे। जी इस हंसी में शामिल हैं मेरे दौर के सब लोग और आने वाली बहुत सी नस्लें और बहुत से लोग, और ये सब नस्लें रिफत सरोश की 56 किताबों और उनके ब्रॉडकास्टिंग के तजुर्बात से मुस्तफीद होते रहेंगे। रिफत सरोश जैसे इंसान कम ही पैदा होते हैं, मगर जब होते हैं तो समाज पर, सारे मुआशरे पर सदियों तक अपनी छाप छोड़ जाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शाहिना खान से ये मालूमाती तकरीर। उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने वालिद साहब की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली। यकीनन इस तकरीर से हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। सामईन कराम, आज हम काजी नजरुल इस्लाम की योम विलादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, और इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम बज़्म नौबहार यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

提交自我申报表。听众朋友们，刚刚播送报告新闻完了，请收听印度民间歌曲。

0: अरे सा तो ठीक से लगाओ।
1: सा सा सा सा सा सा सा
0: सा। हाँ अब गाओ।
2: अरे ये गाएगा क्या, इसके पास बोल तो है नहीं, सिर्फ धुन है।
0: अच्छा तो बोल मैं देती हूँ, जरा धुन तो सुनाओ।

印度德里广播电台现在播送一篇桑特尔人的民间故事，题目是《懒惰的妻子》。一位年轻的桑特尔人结了婚，

0: 听众朋友们，今天的普通话节目播送到这里，谢谢收听，再会。
1: हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं खेलों से भरा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और मेरे साथ हैं आज मेरे सहयोगी
2: वसीम अहमद।
1: मैं और वसीम आज लेकर के आए हैं आपके लिए खेल जगत से जुड़ी तमाम खेल गतिविधियां जिनको सुनने के इच्छुक आप होते हैं, और हर शाम आकाशवाणी पर हम अपने खेलों से भरा कार्यक्रम आप सभी के समक्ष लेकर के आते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जिन खेल गतिविधियों पर हम नजर रखेंगे उनमें शामिल होगा क्रिकेट, साथ ही साथ एथलेटिक्स के बारे में आपको बताएंगे, योगासन की खबरों से भी आपको जुड़वाएंगे, फुटबॉल के ग्राउंड में भी आपको लेके जाएंगे, साथ साथ आईपीएल के महामुकाबलों पर भी होगी हमारी नजर, और काफी कुछ खबरें ऐसी हैं जिसको सुनने के लिए आपको हमारे कार्यक्रम में बैठना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम अब तक की सबसे स्पेशल खबर यानी एथलेटिक्स में, क्योंकि अभी हाल ही में जो सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो खत्म हुई है, और उस चैंपियनशिप में बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं वो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बनाए हैं, साथ साथ बहुत सारे जो स्थान है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वो उन्होंने अर्जित की है। चलिए जानते हैं एक विस्तृत जानकारी। रांची के मोहराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 22 से 25 मई तक आयोजित हुई 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन चैंपियनशिप का समापन सोमवार को रोमांचक मुकाबलों के साथ हुआ। चार दिनों तक चले इस राष्ट्रीय आयोजन में देश भर के शीर्ष एथलीटों ने हिस्सा लिया और कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। आयोजन के मुख्य आकर्षण बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहे, जिसमें प्रतियोगिता में भारतीय स्प्रिंटर विशाल टीके ने 400 मीटर की दौड़ 44.98 सेकंड में पूरी करके एक नया इतिहास रचा। पंजाब के गुरविंदर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा को महज 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और इतिहास रच दिया। इसी के साथ वो 10.10 सेकंड से कम समय लेने वाले पहले भारतीय धावक बनकर देश के सबसे तेज पुरुष बन गए हैं। निमेश कुजूर ने सेमीफाइनल रेस 10.15 सेकंड में पूरी करके सनसनीखेज प्रदर्शन किया। पुरुषों की पोल वॉल्ट में देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए। महिला वर्ग में नंदिनी ने 100 मीटर हर्डल्स में स्वर्ण पदक जीतकर एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। पुरुष हाई जंप में सर्वेश अनिल कुशारे ने शानदार छलांग के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। चार दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में सुबह और शाम के सत्रों को मिलाकर लगभग 70 स्पर्धाएं हुई। ट्रैक एंड फील्ड की सभी मानक विधाओं में कुल 40 फाइनल आयोजित किए गए, जिसमें पुरुषों की डेकैथलॉन और महिलाओं की हेप्टाथलॉन शामिल थी। प्रतियोगिता के चौथे दिन पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में इतिहास बन गया। मध्य प्रदेश के एथलीट देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने भारत के पुरुष पोल वॉल्ट का पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड 5.41 मीटर को तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड हाल ही में कुलदीप कुमार ने भुवनेश्वर में बनाया था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान 10 से अधिक नए रिकॉर्ड बने, जबकि कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। चैंपियनशिप के अंतिम दिन सबसे ज्यादा चर्चा पुरुष शॉटपुट मुकाबले की रही, जहां मध्य प्रदेश के 25 वर्षीय समरदीप सिंह गिल ने अनुभवी पंजाब के तजिंदर पाल सिंह तूर को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। समरदीप ने 20.46 मीटर का थ्रो करके गोल्ड जीता और साथ ही ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए निर्धारित 20.36 मीटर के क्वालिफिकेशन मार्क को भी पार कर लिया। वहीं दो बार की एशियन गेम्स चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर 20.07 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अपनी इस उपलब्धि पर समरदीप ने कहा,
3: थैंक्स टू एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसने मेरी इतनी हेल्प करी और मेरे को इतना अच्छा एक्सपोजर दिया था ताकि इतने मैं कॉम्पिटिशन्स खेल पाऊँ एंड मैं अपने आप को पुश फॉरवर्ड कर पाऊँ। सो द एक्सपीरियंस आई वुड से इट वाज ग्रेट। प्रिपरेशन आई वुड से दैट कि इट डिपेंड्स ऑन माय कोच जो ने वर्कआउट प्लान किया था एंड यस आई हैव ब्रीच्ड द मार्क ऑफ एशिया क्वालिफिकेशन एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ बट होप टू डू एंड मेक इंडिया प्राउड। जब आपके बैक पे इंडिया लिखा हुआ होता है तो यू हैव अ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो आई विल मेक श्योर कि आई विल मेक प्राउड इंडिया। कोच मैन वी विल डिसाइड, मेरी टीम जो हम लोग सब साथ में रहते हैं वो सब सोचेंगे कि किस बेस पे हमें कितने दिन बचे हैं, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज गुड फॉर मी व्हाट इज गुड नॉट, सो दैट डिपेंड्स ऑन माई कोच एंड वर्कआउट प्लान्स। सो वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल प्लान समथिंग फॉर गुड एंड वी विल होप दैट
1: पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में कर्नाटक के यशस पी और एनसीओई त्रिवेंद्रम के संतोष कुमार टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट हासिल किया। यशस ने यहां स्वर्ण पदक जीता जबकि संतोष कुमार ने 49.06 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहकर ये कारनामा किया। दोनों खिलाड़ियों ने निर्धारित क्वालिफाइंग समय 50.27 सेकंड से बेहतर प्रदर्शन किया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में महाराष्ट्र के युवा खिलाड़ी शिवम लोहाकरे ने 81.71 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। हालांकि वो कॉमनवेल्थ क्वालिफिकेशन मार्क 82.61 मीटर से मामूली अंतर से चूक गए। राजस्थान के यशवीर सिंह ने 80.80 मीटर और रोहित यादव ने 80.40 मीटर के साथ रजत पदक और कांस्य पदक हासिल किए। ट्रिपल जंप में के प्रवीण चित्रावेल ने 17.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। ये प्रदर्शन प्रतियोगिता के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में शामिल रहा। पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में ओडिशा के निमेश कुजूर ने 20.64 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। केरल के जीशु प्रसाद और अभय सिंह तीसरे स्थान पर रहे। पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में हरियाणा के कृष्ण कुमार ने 1 घंटा 47 मिनट 6.08 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

0: दक्षिणी महाराष्ट्र के प्राथमेश और सत्यजीत एस दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 5000 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुराम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की स्पर्धाओं में भी कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में तमिलनाडु की विथ्या रामराज ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में पूजा ने 2:02:42 का समय निकालकर गोल्ड अपने नाम किया। हाई जंप में उत्तर प्रदेश की ख्याति माथुर ने 1.82 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण जीता। 4 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय आयोजन ने रांची को एक बार फिर राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है। देश भर से आए एथलीटों, कोचों और अधिकारियों ने बिरसा मुंडा स्टेडियम की सुविधाओं और आयोजन की सराहना की। प्रतियोगिता के दौरान कई युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए मजबूत दावेदारी पेश की। 29वीं नेशनल सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए एक मास चयन ट्रायल था, जिसमें अनिमेश 100 मीटर, समरदीप सिंह गिल शॉटपुट, गुरविंदर सिंह और विशाल टीके जैसे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट हासिल किया। इस चैंपियनशिप के जरिए भारतीय एथलेटिक्स को कई नए सितारे मिले, जबकि अनुभवी खिलाड़ियों ने भी अपनी क्षमता साबित की। अब इन खिलाड़ियों की निगाहें आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स पे रहेंगी, जहां भारत को इनसे पदकों की बड़ी उम्मीद होगी। तो एथलेटिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक खिलाड़ी ऐसे और भी थे जिन्होंने अपना एक नाम जो है भारत में कमा लिया। जी हाँ, डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने गोल्ड मेडल जीता और 8000 पॉइंट अर्जित करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो ये एथलेटिक्स जो है, अब आयाम जो है इसमें बहुत ऊंचे होते जा रहे हैं और कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जिन खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपना जो स्थान पक्का किया है, वो अपनी तैयारियां और मजबूती से करेंगे, जिससे मेडल जो है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। चलिए अब आपको एथलेटिक्स ग्राउंड से निकाल के लेके चलते हैं सीधा योगासन में, जहां पर हम जानते हैं कि भारत जो है योग की प्राचीन विधाओं को देने वाला एकमात्र देश है जिसने योग जैसी विधा को अभी तक संभाल के रखा है। इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि भारत की ही देन है, 21 जून को। ऐसे में आजकल योगा को लेकर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अब जागरूक हो रहे हैं। तमाम तरह की चैंपियनशिप प्रतियोगिताएं इसमें हो रही हैं, तो मुझे बताते हुए ये बहुत ज्यादा हर्ष हो रहा है कि भारत में पहला जो विश्व योगासन चैंपियनशिप है उसका आयोजन होने वाला है और ये प्रतियोगिता 4 से लेकर 8 जून तक अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी। क्या कुछ प्रतियोगिताएं हैं, किस तरह से आयोजन होगा, इन सारी ही बातों पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन जी की ये विस्तृत रिपोर्ट सुनते हैं।
1: विश्व को योग की शिक्षा देने वाले भारत को पहली योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद के एका अरेना में आयोजित किया जाएगा। चैंपियनशिप में युगांडा, जाम्बिया, नेपाल, केन्या, जापान, ओमान, मॉरिशस और नीदरलैंड सहित 70 से अधिक देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। यह आयोजन योगासन को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल के रूप में स्थापित करने और ओलंपिक मान्यता की दिशा में भारतीय पहल का हिस्सा है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज यहां एक भव्य समारोह में योगासन विश्व चैंपियनशिप के लोगो, ट्रॉफी, जर्सी और वीर शेर के शुभंकर को भी लॉन्च किया। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मांडविया ने कहा,
2: पहली बार वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप इंडिया में हो रही है, अहमदाबाद में हो रही है। योग भारत के द्वारा दुनिया को दी गई एक अनमोल भेंट भी है। यहाँ उल्लेख हुआ 5000 साल पहले जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कृष्ण ने अपने स्वजनों को देख के लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसको कर्मयोग का ज्ञान दिया। योग हमें तन और मन दोनों की तंदुरुस्ती देता है। मेरा नाम ही मनसुख है तो मुझे सबसे पहले याद रहेगा, क्योंकि मन का सुख देने वाला योगासन है। दुनिया ने उसको स्पोर्ट्स के रूप में भी स्वीकारा। भारत से निकला हुआ एक प्रवाह सारी दुनिया को, वर्तमान समय की दुनिया को हिट कर चुका है। 500 से अबव योगासना कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने के लिए दुनिया से आएंगे, हमारे लिए गौरव का विषय है।

0: क्योंकि वर्ल्ड की पहली योगासना चैंपियनशिप भी हम ही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सॉफ्ट पावर हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। सॉफ्ट पावर के रूप में दुनिया में हमें प्रसिद्धि भी दे, ऐसे योगा को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है। उसके इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए 75 कंट्री में जो फेडरेशन बन गया हो तो वहाँ रजिस्ट्रेशन मिलता है, और बाद में ओलंपिक्स गेम्स बनने के लिए आग्रह कर सकते हैं। हम 2036 के लिए भारत में ओलंपिक्स आए उसके लिए बीड कर चुके हैं। इसलिए हमारा स्पोर्ट्स जब हमारे देश में ओलंपिक्स आयोजित होंगे तब ओलंपिक स्पोर्ट्स के रूप में आए, ये दिशा में फेडरेशन और भारत सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है।
1: बारह श्रेणियों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भारत के 114 सदस्य दल के भाग लेने की संभावना है। इसमें दोनों वर्गों में 6 विभिन्न आयु वर्ग होंगे। भारत के बाद नेपाल का दल सबसे बड़ा होगा। इसके अलावा जापान और श्रीलंका से भी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के आने की संभावना है। परंपरागत और रिदमिक श्रेणियों में एकल, युगल और ग्रुप मुकाबले होंगे। विश्व योगासन की सचिव एकता बॉर्डरलीक ने कहा, यह चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक मंच पर बड़ा आयाम देगी।
2: ये जो कंपटीशन होने जा रही है, भारत का एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है कि योगासन भारत ये स्पोर्ट को पूरी दुनिया तक लेके जाने के लिए वर्ल्ड योगासना इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कर रही है अहमदाबाद में। दुनिया का हर एक बच्चा कोई भी स्कूल में इसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की ओर से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, इसको अपने जीवन में उतार के योग से जो चेंज आ सकता है वो एथलेटिज्म के द्वारा, स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के द्वारा लेके आने के लिए भारत का ये जो हौसला, भारत का ये जो प्रयास है बहुत बड़े पाये पे होने जा रहा है। और अहमदाबाद में 71 कंट्री से लोग आ रहे हैं, एथलीट्स आ रहे हैं, तो 500 एथलीट से ज़्यादा एथलीट्स आने की क्षमता अभी बन चुकी है। और पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इंस्पिरेशन से ये स्पोर्ट्स की रचना की गई है, और हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि ये स्पोर्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में 2030 अहमदाबाद और उसके बाद ओलंपिक्स तक इजीली अभी इसको लेके जाने के लिए पूरा इसका आयोजन हो चुका है। यंग बच्चों को, माने स्टूडेंट्स और यूथ को इस स्पोर्ट में भाग लेने के लिए आप प्रोत्साहित करें, ताकि भारत और एक बार दिखा दे कि कैसे दुनिया में योग से चेंज आ सकता है, बट दिस टाइम थ्रू स्पोर्ट्स। परंपरा रही है, और परंपरा जैसे जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हर रोज थोड़ा सा योग, थोड़ा सा प्राणायाम, और इस चीज को अपने लाइफ में जब हम ध्यान को लाते हैं, हम जब लोगों को ध्यान सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं और उनको एक प्रेरित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, तब दुनिया में चेंज भीतर से आता है।
1: विश्व चैंपियनशिप में अंक प्रणाली और स्कोरिंग के बारे में एशियन योगासन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मालपानी बताते हैं।
3: योगासन खेल की जो स्कोरिंग सिस्टम बनी है उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम है। जब एक एक जज मार्क देता है तो उन सब के मार्क वो अपने लैपटॉप पर

0: और आकाशवाणी में कार्यक्रम करते समय ऐसा लगता था कि हम बहुत बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं।
1: अब वैसे देखा जाए तो आकाशवाणी ने एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अपने जितने भी कार्यक्रमों का निर्माण किया, चाहे जो भी सूचनाएं जानकारियां दी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ दी।
0: और देखिए जिम्मेदारी से ये कार्यक्रम आप जो है सुबह से कार्यक्रम चलता था कृषि चर्चा, 5 मिनट में पूरे दिन में किसान को क्या करना है ये कि पूरा का पूरा एक कैप्सूल उसको दे दिया जाता था।
1: अच्छा, ये अलग से बनता था?
0: हाँ, मैंने पूरे शार्प जिसे कहते हैं ना, 5 मिनट में किसान को बता दिया जाता था कि आज आपको ये काम करना है, मौसम का ये हाल है, इस तरह करना, ये सारी हिदायतें दे दी जाती थी और किसान उस पर काम करता था, किसान उसको सुनता था। ना सिर्फ किसान सुनता था, जो हमारे देश के योजना के निर्माता थे वो भी सुनते थे सुबह का ये 5 मिनट का कार्यक्रम कि खेती में क्या चल रहा है इस समय, अगर कोई बड़ा तूफान आने वाला है या ओले पड़ने वाले हैं उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये सुबह उठते ही किसान को बता देते थे।
1: ये भी देखा गया है कि जब कभी किसी बात की जानकारी लेनी होती है, ऑथेंटिक बातें करने, ऑथेंटिक जानकारी लेनी होती है, तो लोग रेडियो की ओर ही देखते थे, रेडियो ही सुनते थे। रेडियो की जो जिम्मेदारी है, ऑथेंटिसिटी है, वो आज भी बरकरार है, आप क्या कहना चाहते हैं?
0: देखिए, रेडियो ने इस काम को जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रेम समझ के लिया। जो एक प्रेम का धागा गांव से और आकाशवाणी के बीच में जुड़ा, वो धागा कमजोर नहीं हुआ, मजबूती होता गया। और यही प्रेम था कि आज जब हम गांव में जाते हैं तो वो प्रेम हमें मिलता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए।
1: ये तो देश की बात है, देश के हित की बात है, जिसकी वजह से लोग हमारे खेती किसानी वाली बात को पसंद करते हैं, लोग इससे जुड़ते हैं, अपनी बातें रखते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं, और आकाशवाणी की पूरी कोशिश होती है, समाधान भी करती है
0: उनकी समस्या जो है ना, वो हम ये मान के चलते हैं
1: हमारी समस्या।

0: अगर फसल में कोई गंभीर रोग आ गया है तो इसका कैसे निवारण किया जाए, तुरंत वैज्ञानिकों से बात की जाती है, बार बार बताया जाता है कि इस रोग से निपटने के लिए ये काम किया जाए, क्योंकि ये समस्या उनकी नहीं, ये पूरे राष्ट्र की समस्या है।
1: राजीव जी, आपने एक लंबा दौर देखा और बहुत ही खूबसूरत समय बिताया, और साथ ही साथ आपने कई कार्यक्रमों का निर्माण किया, श्रोताओं से जुड़े, आपको एक अलग अनुभव रहा। तो जो पहले का जो दौर रहा है और आज के दौर में कितना फर्क महसूस करते हैं?
0: देखिए, आज का दौर भाग दौड़ का तो हो ही गया है, और कृषि में भी बहुत उन्नति हुई है। आज हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि देखिए, कहते ना, ये युग जो चल रहा है बहुत तेजी का युग है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदल रही हैं, और देश की, जैसे कि आप जानते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, उसके लिए कृषि ही एक चीज है पेट भरने का साधन, तो उसमें कैसे और गति लाई जाए। और ये देखा गया है कि जो युवा हैं, पहले थे ना युवा, शहर की तरफ भागते थे, ये जब संसाधन पूरे पहुंच गए, कंप्यूटर पहुंच गया, इंटरनेट पहुंच गया, मोबाइल पहुंच गया, तो आज का युवा गांव में रहकर ही खेती बाड़ी उद्योग लगाने में ज्यादा अच्छा महसूस करता है, बशर्ते शहर भागने का। एक बहुत अच्छा बात भी है कि शहर की तरफ जो झुकाव था वो कम हुआ है। आज आप देखिए, दूध उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई है, मुर्गी पालन में बहुत बढ़ोतरी हुई है, आप देखें इन चीज़ों की देश में कमी नहीं है, क्योंकि आज का युवा, पढ़ा लिखा युवा खेती से जुड़ गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। आज आप देखें तरह तरह के नए नए फूल आ रहे हैं, अगर आप कहीं शहरों में अच्छे होटल में जाते हैं, इतने खूबसूरत फूल जो हम विदेशों में देखते थे, आज हमारे युवा किसान भाई उसको अपने खेतों में उगा रहे हैं।
1: और इन सब के पीछे ये जो 90 वर्षों का जो सफर है आकाशवाणी का, इसमें आकाशवाणी की भूमिका बहुत बड़ी रही है, इसे हम सभी स्वीकार करते हैं और जिम्मेदारी के साथ भी। राजीव जी, ऐसे बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे संस्मरण हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम सुनना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी किसान बहनों और भाइयों को एक बार फिर से राम राम।
2: श्रोता सुन रहे थे कृषि क्षेत्र में आकाशवाणी की भूमिका, और इसमें हिस्सा लिया था राजीव कुमार निगम ने, और इनसे बातचीत कर रहे थे कमल किशोर।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ,
5: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
5: ना,
4: पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया, जाओ भाई।
6: RBI कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
2: तो श्रोताओं, अब बात करेंगे जल संरक्षण उर्वरकों का संतुलित प्रयोग। जैसे कि जल संरक्षण और उर्वरकों का जो संतुलित प्रयोग है, ये पानी और उर्वरक खेती की रीढ़ है, लेकिन इनका सही उपयोग नहीं करें तो पैदावार और भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बिगड़ सकती है। तो क्या कर सकते हैं किसान इसके लिए? जो भूजल स्तर नीचे जा रहा है, इसके लिए हर किसान को पानी बचाने की दिशा में काम करना चाहिए। अब उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं कि क्या कर सकते हैं, और हमारे जो कृषि के कार्यक्रम है उसके माध्यम से किसानों को बताया भी जाता है, जो हमारे किसान भाई बहन खेतों में काम कर रहे हैं, कि खेत में ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली को अपनाएं, वर्षा का जल संचयन करें, खेतों की मेड़ों को मजबूत रखें ताकि पानी एकदम से बाहर निकल के ना चला जाए, सुबह शाम समय सिंचाई करें, इससे पानी की बचत होती है, क्योंकि दिन में क्या होता है, धूप होती है तो ज़्यादा पानी लग जाता है। फसल अवशेषों और मल्चिंग का प्रयोग करें जिसमें मिट्टी की नमी बनी रहती है।
8: बिल्कुल शीतल बहन, उर्वरकों का जो संतुलित प्रयोग बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि मिट्टी की जाँच के आधार पर पौधों को सही मात्रा में, उचित अनुपात में बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य और फसल की उपज लंबे समय तक बनी रहती है। और संतुलित प्रयोग इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि फसल की गुणवत्ता और उपज भी सही होती है। मृदा स्वास्थ्य, यूरिया या DAP के अत्यधिक और असंतुलित प्रयोग से मिट्टी बंजर होने लगती है, तो इसे संतुलित प्रयोग इसको ना बचाता है बंजर होने से। पर्यावरण संरक्षण भी मिलता है, और इसके अलावा लागत में भी कमी के हिसाब से बेहद बेहिसाब खाद डालने में पैसा बर्बाद होता है, जबकि आवश्यकता अनुसार सही मात्रा में उपयोग से खेती की लागत कम हो जाती है। जैविक खादों का भी उपयोग होता है, केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर होने के बजाय जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट का प्रयोग करें, जो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इससे जल संरक्षण उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने में बहुत लाभकारी होता है। तो अब शीतल बहन कुछ मनोरंजन भी करवा देते हैं।
2: हाँ।
8: तो आइए हम सुनवाते हैं पूनम त्यागी यानी बबीता

0: श्रोता सुन रहे थे बबीता और पूनम त्यागी की आवाज़ में ये रागिनी, और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम
1: ग्राम
0: संसार
1: संसार
0: कार्यक्रम
1: प्रोग्राम।
0: यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम
1: राम राम।
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी

0: वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
1: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के चार प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविय ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविय ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉक्टर मांडविय ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। IPL क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता से दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।
1: शीतल बहन, इस कार्यक्रम में हम बातचीत सुनवाएंगे, योजना के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ मनोरंजन तो होगा ही, तो लेकिन सबसे पहले हम बातचीत सुनवाते हैं सहकारी कृषि और किसानों की आय में वृद्धि। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव उपाध्यक्ष कृभको से हैं, यानी कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
0: इनसे बातचीत कर रहे हैं पीएस भाटी।
2: किसान बहनों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जिससे कृषि और ग्रामीण विकास दोनों ही आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की की तरफ जा सकते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार सभी सहकारिता के माध्यम से किसानों के विकास के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन और पूरे देश में किस तरह सहकारिता से काम किया जा सकता है, किस तरह किसान और गांव के युवाओं को तरक्की मिल सकती है, इन सब बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं सहकारिता के स्तंभ डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी। और भाई, विश्व स्तर की बात करें तो के अध्यक्ष यानी कि एशिया पैसिफिक के भी अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका इतना लंबा अनुभव

0: रहा है सहकारिता को लेकर, तो किस तरह ग्रामीण और कृषि विकास किया जा सकता
1: है? हम सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। अगर हमारे किसान के खेत में अच्छा उत्पादन होगा, निश्चित रूप से किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। वो किसान जब आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तभी इस देश को हम आर्थिक रूप से मजबूत करते हुए देश दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें अपना स्थान रख सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से मैं समझता हूँ कि सहकारी क्षेत्र ने कृषि के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज किसान जो खेती करता है, किसान को अच्छा बीज, अच्छा खाद समय से सही कीमत में, सही मात्रा में उपलब्ध कराने वाले के लिए हमारा सहकारी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बहुत बड़ा शेयर जो है सहकारी क्षेत्र के पास है और वो समय से किसानों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसके साथ साथ हमारी जो अन्य संस्थाएं हैं, जैसे हमारा सहकारी बीज सहकारी संस्था है जो नेशनल लेवल पर अभी हम लोगों ने उसको इनिशिएट किया है, उसके माध्यम से पूरे देश में किसानों को हर फसल का अच्छा बीज उपलब्ध कराने के लिए, जहां ब्रीडर सीड यूनिवर्सिटीज़ में पूरा साइंटिस्ट जो है अन्वेषण करके और उसको फाउंडेशन सीड तैयार करके और इन संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में जो अच्छे खेती करने वाले कृषक, उन्हीं के माध्यम से बीज तैयार कराने का काम करके और फिर उसको सर्टिफाइड करके पूरे देश के किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। आज उत्पादन में बीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अच्छा बीज होगा तभी खेत का अच्छा उत्पादन होगा। हम लोग प्रयास करते हैं कि किसान को जो खाद है, चाहे यूरिया हो, चाहे DAP हो या SSP है, जिंक है या कोई भी फर्टिलाइज़र जो किसान को आवश्यकता है, हम सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में किसानों को फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराने का काम लगातार कर रहे हैं। हमारा किसानों से ये भी अनुरोध रहता है कि संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करके ही अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अगर संतुलित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करके साथ में बायो फर्टिलाइज़र है, कंपोस्ट है या और जो सहयोगी खाद किसानों को उपलब्ध कराई जा सकती है वो उपलब्ध करा के, और ये प्रयास रहता है कि किसान जहां अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सके, उसकी लागत भी कम रहे और जो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो भी कम ना हो, इसके लिए भी हम लगातार किसानों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सहकारी क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से समय समय पर कृषि गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं, किसान को असुविधाओं को देखते हुए उनको प्रदेश सरकार या देश की सरकार के माध्यम से जो उनकी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसको सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर किसान बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। क्योंकि आज का किसान के खेत में जब अच्छा उत्पादन होगा तभी किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एक तरफ उत्पादन है, दूसरी तरफ विपणन है। जब किसान के खेत में अच्छा उत्पादन होता है तो बाज़ार में किसान को अच्छी कीमत मिले या भारत सरकार के द्वारा जो तय की गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसान को उपलब्ध हो, उसके लिए भी हमारी तमाम देश की मार्केटिंग की संस्थाएं किसान के उत्पाद को खरीदने का लगातार प्रयास कर रही हैं। हमारे नाफेड है, पूरे देश में किसानों की हर फसल को खरीदने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पूरे देश में जगह जगह अपने क्रय केंद्र खोल करके और किसानों की फसल को खरीदने का काम कर रहे हैं। वहीं नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन भी इस काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कि किसानों को बाज़ार में कोई चीटिंग ना कर सके। किसान जब बाज़ार में जाए उसकी जो लागत है, उसकी मेहनत

0: करते हैं उसके अनुसार सरकार के द्वारा तय की गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी तमाम कृषि से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनके अपने भंडार भी हैं लोग किसानों के उत्पाद को और समय से अच्छी कीमत दिलाने के लिए उनको भंडारण अगर करना है उसके लिए भी हमारी संस्थाएं आगे आ रही हैं और किसानों को समय पर जहां उनके उत्पाद को भंडारण कर रही हैं उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने का भी काम कर रही हैं। हमारी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कृषि उत्पाद को हम एक्सपोर्ट भी करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश का जो उत्पादन है अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से उसका सीधा लाभ किसानों को होगा, उनको अच्छी कीमत मिलेगी। हमारा ये भी प्रयास रहता है सहकारी क्षेत्र का जो किसान का उत्पादन हो उसको प्रसंस्करण करके या प्रोसेस करके उनको वैल्यू एडिशन करके और हम किसान के इस उत्पाद को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करें और लगातार हमारी संस्था NCEL और क्रिको एग्री बिजनेस नैफेड ये संस्थाएं उत्पाद को विदेशों में भेजने का काम कर रही हैं जहां उससे देश की साख बढ़ रही है वहीं हिंदुस्तान के किसान का उत्पाद जो है काफ़ी लोगों के बीच में फेमस हो रहा है। हम सहकारिता के माध्यम से ये भी प्रयास कर रहे हैं जैसे हमने पहले ही कहा कि एक तरफ संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करना चाहिए वहीं जो है ऑर्गेनिक खेती का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और ऑर्गेनिक खेती के लिए भी लोगों को जागृत किया जा रहा है, उन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे कि किसान जो है ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करके और कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। इस तरीके से हम लगातार किसानों की मदद भी कर रहे हैं, किसानों को हम ट्रेंड भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रशिक्षित किसान बहुत अच्छी खेती कर सकता है, वहीं कम लागत भी लगा सकता है, वहीं अच्छे मार्केट में बेच भी सकता है। तो इस तरीके से लोगों को अगर जानकारी होगी, लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी तो निश्चित रूप से किसान अच्छी खेती करेगा, अच्छा उत्पादन करेगा और अच्छी कीमत पे बाजार में बेचेगा, उसे आर्थिक लाभ होगा। और इसके लिए हमारा प्रयास है कि पूरे देश में किसानों को ये महसूस कराया जाए कि सहकारी क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरीके से किसानों के लिए समर्पित है और किसानों के हित के लिए काम कर रहा है। इसलिए सहकारी क्षेत्र से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए, जहाँ सहकारी क्षेत्र मजबूत हो वहीं सहकारी क्षेत्र के माध्यम से किसान मजबूत हो, एक दूसरे की मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना है, देश को मजबूत बनाना है और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में इस देश के सहकारी क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। यही हमारा आज के मौके पर आपसे
1: बिल्कुल किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई सहकारिता के माध्यम से जुड़कर आप कृषि में भी ग्रामीण विकास में भी सब में अपना योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोता सुन रहे थे सहकारी कृषि और किसानों की आय में वृद्धि और इसमें बातचीत में हिस्सा लिया था चंद्रपाल सिंह यादव उपाध्यक्ष हैं क्रिबको से और इनसे बातचीत कर रहे थे PS भाटी।
3: और शीतल बहन, हम हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि शिक्षा योजना के बारे में जी। और इस योजना के प्रमुख बिंदु और विशेषताएं हैं कि योजना का लक्ष्य है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से भूमि के सुधार में स्वास्थ्य में सुधार करना और किसानों की आय में वृद्धि करना।
2: बेसिकली मतलब सामान्य तौर पर इसका जो मेन उद्देश्य है कि कृषि शिक्षा योजना का ग्रामीण युवाओं और किसानों की कृषि से जुड़ी नई तकनीकों, आधुनिक खेती, पशुपालन, जैविक खेती, कृषि व्यवसाय में इनको जानकारी देना, जिसके बाद जो हमारे किसान हैं इससे लाभ पाते हैं। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण मतलब इसमें ट्रेनिंग दी जाती है उनको, इसके साथ साथ मिट्टी परीक्षण, उर्वरक प्रबंधन, जल संरक्षण की जानकारी दी जाती है।
3: शीतल बहन, जो प्रशिक्षण केंद्र की आपने बात करी कि इस योजना के तहत देश भर में 100 केंद्र स्थापित किए गए हैं, इन केंद्रों के जरिए ग्रामीण स्तर पर कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जाते हैं
2: जी बिल्कुल। और इसमें क्या होता है किसानों को पशुपालन, डेयरी, बागवानी से भी जुड़ी शिक्षाएं दी जाती हैं, क्योंकि कई जो किसान भाई हैं खेती के साथ साथ मुर्गी पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। और पशुपालन कैसे, दूध से क्या उत्पाद बनते हैं, कैसे डेयरी पहुँचाया जाता है, इन सब की इनको जानकारी देकर ट्रेनिंग देकर उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3: और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण और ग्राम स्तर पर जैविक

0: नीति से जुड़े कुशल युवाओं और मानव संसाधन को तैयार करना, रोजगार के अवसर देना, कृषि शिक्षा को कृषि आधारित व्यवसायों जैसे डेयरी, बागवानी आदि के साथ जोड़कर ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना भी है।
1: जी बिल्कुल, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं,
0: सुनवाते हैं हम आपको एक
1: वाजिद अली की आवाज़
0: किस्सा है, गोगा जाहर वीर का किस्सा। वाजिद अली कलाकार हैं, तो सुनते हैं ये किस्सा।

0: श्रोता सुन रहे थे ये बाजिद अली की आवाज़ में किस्सा था गोगा जहाबीर का, और अगली रागनी भी सुनेंगे बाजिद अली की आवाज़ में।
1: ओ अल्लाह के निरंजन मेरा बजो ले राम ने, अल्लाह के निरंजन मेरा

0: तो श्रोता सुन रहे थे वाजिद अली की आवाज़ में ये रागिनी। और अपने श्रोताओं को बता दें कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा
1: बिल्कुल
0: लगा।
1: बिल्कुल शीतल बहन, हम ये बताना चाहते हैं हमारे किसान भाई बहनों की आप बताइए ज़रूर कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमें पहुंचाइए। हमारा पता है कृषि एवं गृह कांश केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी दिल्ली। और आप मेल भी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, आप मेल करके भी अपनी सुझाव और प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। तो हमें आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी
1: किसान भाई बहनों को हमारी राम राम।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओ, लीजिए अब प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजाई कार्यक्रम। शुरुआत में आपको सुनवाते हैं साधना सरगम और पंकज उदास को।

श्रोताओं, बड़ा ही अजीब मोहब्बत का ये फसाना है अभी आपने सुनी प्यारी सी गज़ल। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अहमद और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में एक और गज़ल।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का गजल और कव्वाली का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों की समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्रगति की समीक्षा बैठक की। खाद्य और उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अब 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोग भी नए राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा, राजधानी में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को लेकर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों की प्रगति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शीत ऋतु के प्रारंभ से पहले प्रदूषण के स्तर में पर्याप्त कमी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्यान्वयन, मजबूत अंतर एजेंसी समन्वय और कड़े प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में पूरे शहर में इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक चार्जिंग, बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज पंजाब में 4,000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक में श्री गडकरी ने राजमार्ग परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में तेजी लाने और कार्यों को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने परियोजना की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी को महत्वपूर्ण बताते हुए एजेंसियों को राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक निर्माण तकनीकों और सर्वोत्तम इंजीनियरिंग पद्धतियों को अपनाने का निर्देश भी दिया है। श्री गडकरी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के प्रमुख राजमार्ग गलियारों में यातायात की गुणवत्ता में सुधार और निर्बाध संपर्क को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजना खंडों पर मॉनसून की तैयारी के लिए अग्रिम उपाय करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काम के अंतिम चरण की समीक्षा की। श्री सिंह ने बताया कि कई साल की देरी के बाद परियोजना पूरी होने के करीब है। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर 30 जून तक खोलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि फ्लाईओवर बन जाने से लोगों को यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का ध्यान समय पर परियोजना को पूरा करने और राजधानी के लोगों को राहत पहुंचाने पर है।
4: हमने टारगेट 1.25 साल पहले रखा था कि 30 जून 2026 तक इसको पूरा करेंगे। आज हम अपने टारगेट के कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। लाखों गाड़ियां यहां से निकलेंगी, नोएडा, ईस्ट दिल्ली और बाकी पूरी दिल्ली की गाड़ियां यहां पर, उनको जाम से जो अपना समस्या थी उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये अपने आप में इसकी फ्लाईओवर की विशेषता ये है कि अलग से देश में पहली बार ऐसा फ्लाईओवर है जहां पे साइकिल के लिए अलग से लेन बनाई गई है।
3: प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री और राजधानी के कई लोकसभा सांसद शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि सभी राज्यों के नेताओं से भी इस पुस्तक को पढ़ने और ये समझने का आग्रह किया गया है कि कैसे दो मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलकर काम किया।
5: The very name apanapan in our language it means ours. This book I feel is very important that it should be read all budding politicians.
3: वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि ये पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवनी नहीं है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। एकता यात्रा के दौरान श्री मोदी के साथ अपने अनुभव को याद करते हुए श्री चौहान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर श्री मोदी ने देश के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई थी। जब श्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब के अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने अपने अपने राज्यों के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम किया।
6: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है, उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है।
3: कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पुस्तक अपनापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान के अनेक अनुभव संकलित हैं और ये अनुभव निश्चित रूप से सभी के लिए जीवन के सबक साबित हो सकते हैं।
7: आज का कार्यक्रम प्रेरणादायक है। अपनापन जो पुस्तक है उसमें जितने भी अनुभव हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, वो निश्चित रूप से सबके लिए जीवन का एक लक्ष्य हो सकते हैं।
3: दिल्ली सरकार में खाद्य और उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज बताया कि राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के लिए राशन की सीमा को 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए कर दिया गया है।
8: अब दिल्ली के अंदर नए राशन कार्ड बनाने के लिए जिन लोगों की 2,50,000 तक की आमदन है वह सब लोग भी इस राशन कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। उनके पास भी PDS का राशन उनको भी मुहैया कराया जाएगा। दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा।
3: दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सवेरे 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दिल्ली सरकार में विद्युत मंत्री आशीष सूद ने आज बताया कि शहर की बिजली व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है ताकि दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी में बिजली कटौती का सामना न करना पड़े। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली में बिजली का बुनियादी ढांचा अगले 2 साल में और भी मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद बिजली कटौती पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दिवस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पुस्तिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि यह पुस्तिका सामान्य योग अभ्यासक्रम, प्रमुख पहलों और सार्वजनिक भागीदारी के अवसरों के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। इसमें मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे योग संगम, हरित योग, योग समावेश, योग पार्क और योग अनप्लग्ड के साथ साथ 21 जून तक की निर्धारित गतिविधियों का विवरण शामिल है। यह प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने राजधानी में जारी भीषण गर्मी और बढ़ते हुए तापमान के मद्देनजर की गई तैयारियों की समीक्षा के लिए लोकनायक जयप्रकाश LNJP अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने लू प्रबंधन के लिए किए गए इंतजामों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा दल स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं ताकि भीषण गर्मी के कारण नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। डॉक्टर सिंह ने बताया कि अस्पताल ने लू के मामलों के लिए एक व्यापक उपचार तंत्र तैयार किया है, जिसमें अलग आपातकालीन व्यवस्था, ICU की तैयारी, समर्पित बिस्तर, विशेष उपचार कक्ष और मरीजों के लिए चरणबद्ध रिकवरी प्रबंधन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लू से संबंधित विभिन्न स्थितियों के साथ आने वाले मरीजों का प्रबंधन एक सुव्यवस्थित उपचार प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है।
9: जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, हमें लग रहा था कि गर्मी से लोग दिल्ली में परेशान, हीट वेव की समस्या आ सकती है, बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी समस्या आ सकती है। उसके लिए हमने बेडों के लिए और डॉक्टर सबके लिए व्यवस्था कर रखी थी। उसी नियमित हम चेक करने आए कि दिल्ली की जनता को कोई समस्या ना आए।
3: ईद उल जुहा के मद्देनजर उत्तर पूर्वी जिले के सीलमपुर स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय परिसर में शांति बनाए रखने को लेकर एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मस्जिदों और ईदगाहों के इमामों, अमन समिति, नागरिक भाईचारा समिति, नगर निगम अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान संयुक्त पुलिस उपायुक्त अजित कुमार सिंघला ने लोगों से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर करने, स्वच्छता बनाए रखने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा न करने की अपील की। वहीं सभी हितधारकों ने त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस उपायुक्त राहुल अलवल ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1,100 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है।
10: हम लोग उस ड्रिल अरेंजमेंट का प्लान हो चुका है। हमारे यहाँ टोटल 1100 के हमारे पुलिस कर्मचारियों को हमने ड्यूटी पे लगाया है। उसके अलावा भी 23 कंपनीज का आउटसाइड फोर्स का हमने रिक्वेस्ट की है। इन सभी को हमने डिफरेंट मस्जिदों पे और खासतौर पे जो मेजर और सेंसिटिव मस्जिद है, हमने पॉइंट वाइज डिप्लॉयमेंट की है।
3: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों

0: की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: श्री मांडविया ने कहा कि चैंपियनशिप में करीब 75 देशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। दिल्ली नगर निगम की उपमहापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज प्रीत विहार वार्ड में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपमहापौर ने क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, नालों की सफाई, पार्कों के रखरखाव, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और अन्य जन सुविधाओं का जायजा लिया। राजधानी में आज दिन के समय तेज धूप रही और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 26.8 डिग्री सेल्सियस। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों की समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्रगति की समीक्षा बैठक की। खाद्य और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा अब 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोग भी नए राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी गई है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा राजधानी में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को लेकर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

किसी के इश्क में पढ़ने की चाहत है तो किसी की फिर से उजड़ जाने की। देखिए इश्क के तो कई रंग हैं श्रोताओं, लेकिन इस इश्क के रिश्ते की तो मजबूत डोर जो होती है वो आपको और हमको एक छोर से दूसरे छोर तक बांधे रखती है। तो श्रोताओं, हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए आप भी हम संग जुड़े रहिए, बंधे रहिए और खूबसूरत गीतों का आनंद लेते रहिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा देते हैं इश्क से ही जुड़ा हुआ एक और प्यारा सा नगमा।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। श्रोता, आज मैं सोच रही थी कि आपके लिए किस तरह के गीतों का गुलदस्ता लेकर आऊं, और तभी मन में मेरे ख्याल आया कि आज बात इश्क के हल्के, गहरे, चटक और खिलते रंगों की करते हैं। हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो अलग अलग इश्क के रंग गीतों के माध्यम से हमें मिले, और इन रंग से आप हम भी तो अछूते नहीं हैं। कोई लाल रंग के इश्क से रंगा है तो कोई इंद्रधनुषी रंग की छटा से।

इश्क जहाँ दिलों की धड़कन है तो साथ ही साथ स्वरों की सरगम भी। कहते हैं ना कि असल जीना तो आप तभी सीखते हैं जब आप किसी के इश्क में पड़ जाते हैं। जिंदगी के खूबसूरत रंग, खूबसूरत नज़ारे आप तभी देख पाते हैं तब आप किसी के इश्क में पड़ जाते हैं।

शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। श्रोता इश्क का मतलब वही समझेगा इस दुनिया में इश्क जिसे हो जाएगा, लेकिन प्यार इश्क मोहब्बत इनका नाम लेने से पहले दिल को भी ज़रा थाम लीजिएगा।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना श्रोताओं ये प्यारा सा गीत। इश्क किसी के लिए रंग है तो किसी के लिए रोग, लेकिन सच कहूँ ना तो इश्क संजोग है। आप कितना भी इससे बच जाएं, इश्क आपको बचने नहीं देगा। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवा देते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म से लिया गीत। आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत से सजा ये कार्यक्रम गीत मालिका अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करना

0: का निर्णय किया।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
2: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में

0: शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्री स्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stalks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games, Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
2: The High-Level Committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the High-Level Committee on Demographic Change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निज़ाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमिका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दिगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज़ के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये आला सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जामे तौर पर जायजा लेगी, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीकों का भी जायजा लेगी और इसके लिए एक मंसूबा बंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र

0: मोदी ने गुज़श्ता साल लाल किले से यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में आबादियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतही कमेटी के बारे में ऐलान किया था।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
0: ये कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, अगर जरूरी हुआ तो इस कमेटी की मुद्दतकार में 6 महीने तक की तौसी की जा सकती है। आकाशवाणी से विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि हुकूमत ड्रोन्स के जरिए मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को खत्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निज़ाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की है कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर BSF फौज इंतजामिया और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक 4 सतही ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नज़दीक BSF की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस 4 सतही ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि क्वाड ममालिक ने मगरबी एशिया की सूरतहाल पर तबादले ख्याल किया और खित्ते में देरपा अमन कायम करने के सिलसिले में जारी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने का इरादा किया। क्वाड ममालिक ने आबनाए हुरमुज और बहर अहमर के रास्ते जहाज रानी के हकूक आज़ादी सलामती और आलमी तजारत के बिला रुकावट जारी रहने के ताल्लुक से बैन अलाक़वामी कवानीन की पाबंदी की अहमियत को दोहराया जिसकी अक्कासी अक़वामे मुत्तहिदा के समंदर के कानून से मुतालिक कन्वेंशन में होती है। मीटिंग के अख्ताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने कहा कि मीटिंग में आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल के सिलसिले में क्वाड के अहद को दोहराया गया है। आज क्वाड ममालिक ने भारत बहरुल काहिल बहरी निगरानी के सिलसिले में इश्तराक का भी आगाज किया जिसका मकसद बहरी सलामती के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब नायडू ने कहा कि वज़राए खारजा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुश्तरका बयान में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोजा दौरे पर आज सिक्किम पहुंची हैं। उन्होंने तैप्तोलोगी के ऑर्किडोरियम और नामग्याल इदारे का दौरा किया। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने सदर जमहूरिया का खैरमकदम किया। कल सदर जमहूरिया नाथुला पास जाएंगी और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। नजरसानी शुदा MAPP रियासती सरकारों की दरख्वास्त पर की गई है। इसका इतलाक आज से होगा। اس سلسلے میں صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم

करने वाली पीवी सिंधु और भारतीय मर्दों की डबल की जोड़ी सत्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के 16वें राउंड में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वारदानी को 21-17 और 21-18 से हराकर टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार और। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहत के बायस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निज़ाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहुलकाहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये वाला रेफ्रिजरेटर देखिए मैडम, ये इसका अंडों का रैक, और इस शेल्फ को जरा सरका दें तो लंबी बोतल भी फिट हो जाएगी मैडम, सॉरी, और ये इसका रोल बॉन्ड फ्रीजर, बस आधे टाइम में बर्फ तैयार, सॉरी, और हाँ ये इसका जबरदस्त कंप्रेसर, फटाफट ठंडा करे और बिजली भी बचाए, और इसका स्पेशल फोम वाला दरवाजा, ठंड बाहर आ नहीं सकती मैडम, बस आप इसे खरीद ही लो।
1: Kelvinator, the coolest one.
2: जी मैं एक सीटी विशेषज्ञ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि इंसान के पास हर मौके के लिए सीटी है, जैसे पिक्चर हॉल में सीटी, बिना चटकनी के बाथरूम में नहाते हुए सीटी, ओ जी खूबसूरत चेहरा सामने हो तो बजी सीटी हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर खुला हो तो कैसे बजेगी सीटी? ओ जी इतनी ठंड में आपकी सीटी नहीं बैंड बज जाएगी। हाँ
1: कैल्विनेटर, the coolest one.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौती

0: चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग है और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता, आप सुन रहे कार्यक्रम गीत सुनहरे और अभी आपने सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मेरा साया से बहुत ही दमदार गीत। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए IR Live News 24/7।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं। गीत सुनहरे और ये है आकाशवाणी दिल्ली का ही IR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार

0: उनके जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। भारत ने कल नेपाल की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 10 बंदी परिवहन ट्रक भेंट किए। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये वाहन नेपाल की सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संचालन क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसलों को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाभाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाभाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। IPL क्रिकेट में धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर IPL 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah yesterday said the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav, and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners, One in the Home Ministry.

ये आकाशवाणी दिल्ली का याया लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2:10 और पूरे 15 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए।

0: और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षित कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे गजल और गीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। कलाकार हैं एस सिद्धार्थ, वायलन पर संगत की है AG सुब्रमण्यम ने, जबकि मृदंगम पर संगत कर रहे हैं VM कानन।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस सिद्धार्थ का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं पुरंदर दास की रचना जया जानकी कांता।

अर्चना कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे प्रसन्न वेंकट दासुरु की रचना गण के सुलभवू।

0: इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए सुनिए कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आप सुनेंगे आदि तालम जो कि विलंबित तीन ताल में निबद्ध है। मृदंगम पर संगत की है MV चंद्रशेखरन ने, वायलन पर हैं R श्रीधर, घाटम पर N कानन, जबकि तबले पर संगत की है बाबर लतीफ। पखावज पर साथ दे रहे हैं मोहन श्याम शर्मा और सारंगी पर संगत की है एहसान अली ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 मई 2026 सुबह के 4:53 और 51 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जबकि 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी, जबकि 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन, तो वहीं 6:45 का वक्त होगा कार्यक्रम रामचरित मानस का।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार हूँ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। गृहमंत्री ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत

और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी भरोसे पर आधारित होगा। ये दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर में 92 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता के एलिमिनेटर मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव, यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी

आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी 3 श्वास का अभ्यास करें और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें। कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे 3 श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को 2-3 बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूँगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। आज

电台的世界广播，听众朋友们，接下来我们播送阿米塔普恰特吉演奏的古典乐器《轻心伤》。